भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहाँ लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज

विचार मंथन। संत तिरुवल्लुवर के अनुसार आचरण की पवित्रता मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण कर देती है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए सत्येंद्रनाथ टैगोर रचित ये देशभक्ति रचना समूह स्वर में।

कार्यक्रम वंदना के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर रचित ये देशभक्ति रचना समूह स्वर में। परमात्मा शिव जो निराकार है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी निराकार है। जब हम अपनी निराकारी अवस्था में होते हैं, यानी आत्मिक रूप में होते हैं, उस समय शिव को याद करें तो शिव हमें भवसागर से सहज रूप से पार कर देते हैं, हमारी सारी विपत्ति आसानी से हर लेते हैं। तभी तो उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तभी तो उन्हें कहा जाता है वो अगड़दानी है। वो जब देने पे आए तो सब कुछ दे देते हैं। आइए मिलकर

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। भारतीय संस्कृति में स्त्री को माता, शक्ति, जननी और ऐसे अनेक संबोधन है जिनसे अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। मातृशक्ति को सम्मानित करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति माता रानी के नवरात्र मनाती है। आइए माता रानी का गुणगान करते हैं और याद करते हैं माँ जगदम्बा को।

जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मुरली वाला, मोर मुकुट वाला अपनी लीलाओं के लिए जाना जाता है, तो वहीं राम अपने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। आइए मदन मोहन को याद करें और जीवन में उतारें उनके गीता ज्ञान को, जो हमेशा ही शाश्वत है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुने आज का चिंतन। आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का, वाचिका माधवी येंडे।
1: पिटती पत्नी बिकते जेवर, बदल शराबी अपने तेवर। समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के अच्छे और बुरे क्रियाकलापों से प्रभावित होते रहते हैं। समाज में यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसकी गंदी आदतों को लोग शौक शौक में सीख लेते हैं। कच्ची मनोभूमि के लोगों को बिगड़ते देर नहीं लगती। दुर्व्यसनी लोग जब ये दलील देते हैं कि वे अपने शराब पीने, जुआ खेलने में स्वयं का पैसा खर्च करते हैं, दूसरों को उन्हें रोकने का क्या हक है, तो उनकी ये दलील उसी प्रकार ठीक नहीं है जैसे नाव में बैठने वाला व्यक्ति यदि ये कहे कि वो तो अपनी नाव में छेद करेगा, क्या उसके साथी उसे छेद करने देंगे? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने छेद कर दिया तो पूरी की पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसी प्रकार समाज की नाव में दुर्व्यसनों के यदि छेद होते रहे तो क्या पड़ोसी देखते रहेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरा समाज ही रसातल को चला जाएगा। लोग दुर्व्यसनों की चपेट में आते चले जाएंगे और धीरे धीरे पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा डूब जाएगा। दुर्व्यसनों ने ऐसा ही संकट लाकर खड़ा कर दिया है।

0: समय रहते इन दुर्व्यसनों के शिकंजे से बचे रहना ही बुद्धिमानी है। दूसरों को भी इस दुर्दशा से वे ही बचा सकेंगे जो स्वयं दुर्व्यसनों से कोसों दूर हैं। आज स्थिति उल्टी है। लोगों में दुर्व्यसनों की लत तेजी से बढ़ रही है। शराब पीना फैशन की श्रेणी में प्रगतिशीलता का चिन्ह माना जा रहा है। लोग होड़ा होड़ी पी रहे हैं, पीने के लिए संपत्ति बेच रहे हैं, शराब के नशे में धुत्त होकर घर में मारपीट कर रहे हैं और नारकी जीवन जी रहे हैं। नई पीढ़ी में इसकी शुरुआत उनके भविष्य की नींव ही हिलाए डाल रही है। यदि एक शराबी नवयुवक का चित्रण प्रस्तुत किया जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि उसकी बुद्धि कुंठित, मन में क्षोभ, भाव भंगिमाएं क्रोधित, स्वभाव कर्कश, वृत्ति अश्लील, संवेदनाएं मृत, आंखें धसी हुई, चेहरा निस्तेज, टांगें पतली, स्वास्थ्य चौपट, लड़ाई झगड़े को आमादा, विवेकहीन, पतन पराभव की ओर बढ़ता, समूचे परिवार का कलंक और मान प्रतिष्ठा दांव पर। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति संस्कृति की जड़ें उखाड़ रहा है और अपनी पीढ़ी को गड्ढे में ढकेलने में उतारू है। यदि समाज में ऐसे व्यक्तियों का बाहुल्य रहा तो कौन बचाएगा इस देश की संस्कृति को और अस्मिता को। नशे से जीवन की क्षति का क्षरण होता है। नशा करने वालों को बीमारियां घेर लेती हैं, उसका साहस घट जाता है, नशाखोरी प्राण घातक है और नशाखोर घर और समाज का कलंक है। नई पीढ़ी में नशे की बढ़ती लत अत्यधिक चिंता का विषय है। नवयुवक ये सोचें कि उन्हें कैसा जीवन जीना है। नशाखोरों का सा नारकी या सज्जनों का सा सम्मानित, अनपढ़ व्यक्ति जिसमें स्वविवेक और समझदारी का अभाव होता है वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता है। यदि कहीं दुर्व्यसनी और दुराचारी लोगों से दोस्ती कर ली तब तो वे ही उसे बर्बाद करने पर उतारू हो जाते हैं। दुराचारियों की यही शैली है कि पहले दोस्ती करके फंसाना, फिर उसी पर हावी होकर और उसी के साधनों पर मौज उड़ाना। दुराचारियों के चंगुल में फंसकर बर्बाद ना होना पड़े, इसकी व्यवस्था स्वाध्याय और सत्संग से ही बनेगी। अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा पैदा करें, समझ का स्तर ऊंचा करें, दुर्व्यसनों से दूर रहें, मन को कभी कमजोर ना बनाएं। कमजोर मन स्थिति के व्यक्ति पर दुर्व्यसन हावी हो सकते हैं। ये दुर्व्यसन जीवन के अभिशाप हैं और दुर्व्यसनी समाज का कोढ़। तो इन क्षणों में निश्चय करें कि कोई भी दुर्व्यसन जीवन से बड़ा नहीं है। सच्चा नशा जीवन को जोश से जीना है, तभी सार्थक जीवन जीना संभव होगा। रहो नशे से दूर, जीवन जियो भरपूर, ऊर्जा का करो सदुपयोग, रहो स्वस्थ सानंद निरोग।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का था, वाचिका थी माधवी येंडे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान।

मर्म स्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज

भारद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं कृषि समय की। आज इसमें जानकारी का विषय धान की उत्पादन तकनीक।
1: किसान बहनों भाइयों, आज बात करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए धान की आधुनिक खेती के बारे में। बुआई के पहले स्वस्थ बीजों को छांट लें, इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करें। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलो सामान्य नमक ले लें और उसको 20 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल में 30 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह से हिला लें। इसमें स्वस्थ और भारी बीज नीचे बैठ जाएगा और थोथे और हल्के बीज ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से साफ और स्वस्थ छटा हुआ 20 किलोग्राम बीज महीन दानों वाली किस्मों में और 25 किलोग्राम बीज मोटे दाने वाली किस्मों में रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। यदि आप सीड ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपयोग करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो उसमें आपको 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। धान की रोपाई कर रहे हैं यानी कि रोपा पद्धति से धान लगा रहे हैं तो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसी प्रकार जो हमारी पुरानी लेही पद्धति होती थी उसमें 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। धान की अच्छी फसल के लिए बीज का उपचार बहुत जरूरी है, इससे बीजों में होने वाले रोगों और कीटों से बचाव होता है। साथ ही अंकुरण और पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। इसमें बीजों को कवकनाशी घोल में निश्चित समय के लिए भिगोएं। सामान्य कवकनाशी आप ले सकते हैं, ट्राइसाइक्लोजॉल, पाइरोक्विलोन। ये धान के झुलसे जैसे बीज जनित रोगों के लिए अच्छा होता है। इसी प्रकार बेसिलस सबटिलिस एजोस्पाइरलम और फॉस्फोबैक्टीरिया जैसे लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता और पौधे की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। गौमूत्र, प्रोसोपिस काशियम, पुदीने के पत्ते का अर्क, ये जैविक उपचार है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंकुरण दोनों बढ़ते हैं। बीजों को थोड़ी देर के लिए भिगोना और फिर सुखाना, इससे अंकुरण की एक रूपता और गति दोनों बढ़ जाती है। धान की खेती के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जैसे कि चिकनी मिट्टी हो, मटियार हो या मटियार दोमट भी अच्छी मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 उपयुक्त होता है। यद्यपि धान की खेती 4 से 8 या इससे भी अधिक पीएच मान वाली भूमि में हमारे किसान बहन भाई कर लेते हैं, परंतु सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी 6.5 पीएच मान वाली मानी जाती है। क्षारीय और लवणीय भूमि में मिट्टी सुधारकों का समुचित उपयोग करके धान को सफलता से उगाया जा सकता है। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेत की अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। खेत को अच्छी तरह से जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। यह जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार खेत को समतल करने से पानी का बराबर वितरण होता है और कटाई में आसानी होती है। धान एक जलयुक्त फसल है, इसलिए खेत में पानी भरें। पानी की गहराई लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। धान की खेती 2 तरीकों से की जाती है। पहली है रोपाई। सबसे अधिक प्रचलित तरीका रोपाई का ही होता है। बीज को पहले रोपणी में बोया जाता है। जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में रोपा जाता है। रोपाई से अधिक पैदावार मिलती है और खरपतवार नियंत्रण आसान होता है। ड्रिल से भी धान की बुआई की जाती है। बीज को सीधे खेत में बोया जाता है जिसमें कि श्रम की आवश्यकता कम होती है, लेकिन पैदावार रोपाई की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है। धान की खेती के लिए नत्रजन उर्वरक 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा नत्रजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट माना गया है। फास्फोरस या स्फुर उर्वरक 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही जिंक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। यदि आपकी खेती में मोथा कुल के चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार आते हैं तो बुआई से 3 दिन के अंदर पायरेजो सल्फ्यूरॉन इथाइल, ये 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार यदि घास कुल और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं तो डिसपायर रिबेक सोडियम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करें, लेकिन इसका उपयोग आपको बुआई या रोपाई के 17 से 20 दिन के अंदर करना होगा। इसके अलावा घास कुल के खरपतवारों के लिए साई हेलोफॉप ब्यूटाइल, ये

0: लगेगा 750 से 800 मिलीलीटर बुआई या रोपाई के 20 दिन के बाद।
1: कृषि समयिकी में अभी आप धान की उत्पादन तकनीक इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात 10:30 पर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक हम आपको सुनवाएंगे। स्पॉटलाइट आज रात 9:15 पर, विश्व दर्पण आज सुबह 10:30 पर, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 10:00। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। जिले की चिट्ठी आज सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आज सुबह 8:30 पर, सुर्खियों में रात 8:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत युववाणी कार्यक्रम आज शाम 5:02 पर, दिन में 1:00 महिला सभा और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत। इन सभी कार्यक्रमों में आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक रसधार आज सुबह 9 इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिठाई लाल चक्रवर्ती और संजीव सिन्हा के गाए बुंदेली लोकगीत। सुबह 10:05 पर सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की 150। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा आज शाम 6:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर सुनिए रुद्रदत्त दुबे के गाए बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर आप सुनेंगे अमित दुबे की गाई चंद गजलें। कृषि जगत कार्यक्रम आज आधारित होगा वज्जेबा पर। शाम 7:21 पर इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नीलिमा अवस्थी का बुंदेली कविता पाठ। हंसना मना है रात 9:30 पर इस धारावाहिक की आज सुनिए सातवीं कड़ी। आलेख हेमंत कुलकर्णी का।

0: हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 10 बजे आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, सुबह 7 हिंदी में समाचार और सुबह 7:05 पर अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते 6-मार्गीयसुरङ्गस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रियराजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रियराजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुरकबराईखण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमनियन्त्रितमार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35,100 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।

0: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की यह पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जी टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि GST को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल GST के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि GST की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है, जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज

0: ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने उसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा DD न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा,
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहाँ रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पुहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में BBG रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं BBG रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर। कैसे हैं दोस्तों? हम हर बार की तरह यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों और अपने पड़ोसियों के साथ कुशल से होंगे, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक खास विषय पर चर्चा करें, उससे पहले उस विषय का नाम आपको बताए देते हैं। विषय है विकसित भारत @2047। उससे पहले आप चाय की चुस्कियों के साथ इस गीत का आनंद लीजिए और इस गाने को सुनकर आपको लगेगा कि वाकई दिल है कि मानता नहीं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: दोस्तों, इन संदेशों के पहले जो गीत आपने सुना वो था दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का। और वो गीत हमने आपको क्यों सुनवाया, उसका भी कारण है। वो इसलिए सुनवाया कि अब जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं उसके लिए भी हमारा दिल है ना मानता नहीं है। इसलिए नहीं मानता है कि हमारे देश को हमें उस जगह पहुंचाना है जहां उसे होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा का, हमारा विषय है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 केवल एक सपना नहीं है, एक संकल्प है, एक प्रण है, एक रण है। विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक ऐसा विजन है जिसके तहत आज़ादी के 100वें वर्ष यानी सन 2047 तक भारत देश को एक विकासशील देश की श्रेणी से निकालकर विकसित राष्ट्र बनाना ही है। इस लक्ष्य को चलते भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध होना होगा, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई इन पंक्तियों ने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में भारत को विकसित देश बनाने का बिगुल बजा दिया है। विकसित भारत की संकल्पना दो शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक महायज्ञ है, जिस महायज्ञ में हम भारतीयों को अपने अपने हिस्से की आहुति जरूर देनी होगी, ताकि सन 2047 को जब हमारा प्यारा तिरंगा अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष पर लहराए तब ये दिन हमारे लिए गौरव और गर्व करने का दिन हो।

दोस्तों गुड मॉर्निंग जबलपुर, इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका दोस्त हरीश मेहरा। आपको लग रहा होगा कि अब बीच में नाम बताने का क्या मतलब, नाम बताने का मतलब है दोस्तों यहाँ इस गीत को सुनवाने का उद्देश्य जो था वो हमने पूरा किया है। भारत क्या था, भारत क्या है और आने वाले समय में भारत क्या होगा, ये इस गीत के जरिए हम आपको बताना चाहते थे। विकसित भारत 2047, ये केवल ऐसा मिशन नहीं है जिसमें हम गगनचुंबी इमारतें या तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हों। इसका सच्चा और सही अर्थ यह है कि एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही हो, उपचार के अभाव में किसी की जान न जाए, हमारी बेटियां रात में भी बेकॉफ होकर घर से निकल सकें, हमें तकनीकी और हथियारों के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े। भारत को एक ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें क्रांतिकारी बदलाव जरूर लाने होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अमूल चमूल परिवर्तन करने होंगे। मेक इन इंडिया और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी पैठ को और गहरा करना होगा। भारत को नेतृत्व करने वाला देश बनना होगा। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को इस यात्रा का मूल हथियार हमें बनाना ही होगा, तब हम 2047 के भारत की कल्पना कर सकते हैं।

विकसित भारत 2047 हमारे आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। एक ऐसा भविष्य का सपना है जो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और वैभवशाली राष्ट्र बनाकर दे। राष्ट्र प्रथम की भावना को हमें सर्वोपरि रखना होगा, तब निश्चित तौर पर सन 2047 का भारत दुनिया के सामने पुनः विश्वगुरु बनकर अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगा। दोस्तों, विकसित भारत के रूप में हमें भारत के आर्थिक पैमाने पर भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भारत अभी औसतन निम्न मध्यम आय यानी लोअर मिडिल इनकम वाला देश है। विकसित राष्ट्र होने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय को उच्च आय यानी हाई इनकम वाले देशों की श्रेणी की में खुद को खड़ा करना होगा। इसके लिए पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को $13,000 यानी लगभग 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए सालाना आय से अधिक करनी होगी, जो वर्तमान में $2,500 यानी 2 लाख रुपए के आसपास है। केवल इनकम ही नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 का अर्थ है 100% साक्षरता।

साथियों, गुड मॉर्निंग जबलपुर से जाने का समय पास आ रहा है और जितनी भी बातें हमने आपसे की वो आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी। अब बात मूल रूप से ये है कि जब हम बात 2047 के भारत की कर रहे हैं तो उसमें हमारी और आपकी भूमिका क्या होगी। हमारी और आपकी भूमिका हमें खुद तय करनी होगी। सरकार सड़कें बना सकती है, नीतियां बना सकती है, लेकिन देश को महान बनाते हैं वहां के नागरिक। लाल किले से पीएम मोदी ने पंच प्रण का आह्वान किया, जिसके चलते हम सभी भारतीयों को क्या कुछ करना चाहिए इस पर भी ध्यान दीजिए। विकसित भारत का लक्ष्य बड़ा सोचें, छोटा कभी नहीं। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, यानि अपनी भाषा, अपनी क्षेत्रीय बोली और संस्कृति पर हमेशा गर्व करना चाहिए। अपनी विरासत पर गर्व करें, यानि भारत के इतिहास को और उसके ज्ञान को हमें जानना चाहिए। एकता और एकजुटता, जाति धर्म के झगड़े से ऊपर उठकर हमें भारतीय होना पहले होगा। अपने देश के प्रति नागरिकों का जो कर्तव्य है उसे भी हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, तब हम 2047 के भारत की बात कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा? करना होगा लोकल के लिए वोकल, यानि फॉरेन के ब्रांड जो है उनकी बजाय हमें भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। डिजिटल साक्षरता, यानि अपने आसपास के बुजुर्गों या कम पढ़े लिखे लोगों को भी डिजिटल पेमेंट करना सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, स्वच्छता, कूड़ा करकट न फैलाएं और न फैलने दें। यही हमारा परम कर्तव्य होगा अपने देश के लिए और 2047 के भारत के लिए हम यहाँ कुछ सोच पाएंगे।

दोस्तों, गुड मॉर्निंग जबलपुर से अब जाने का समय पास आ गया है। जाते जाते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस विषय पर हमने आपसे बात की वो है विकसित भारत @2047, यानी हमारे देश को हमें उस मुकाम पे पहुंचाना है जहां कभी भारत विश्वगुरु था। हम पुनः उसे वहां पहुंचा पाए उसके लिए देशभक्ति बहुत ज़रूरी है। अब इसके मायने ये नहीं कि हम अपने प्राणों का बलिदान दे दें तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। नहीं, देशभक्ति के सही और सच्चे मायने ये हैं कि हम ईमानदारी के साथ आपके हिस्से में जो काम आए उसे कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि हम हर हाल में अपने देश को सुरक्षित रखें।

और दोस्तों गुड मॉर्निंग, जबलपुर से जाते जाते आपका दोस्त हरीश मेहरा आप सभी को कहता है सलाम नमस्कार। अब आपसे जाते जाते ये बात हमने कह दी है, तो बस ये भी और कह देते हैं कि देखिए देश की बात है, देश को सुरक्षित रखना आपके हाथ में है।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग जबलपुर। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ

0: ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का

0: आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डाइवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified five sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defence Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Railway, for the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. More from our correspondent.
4: The sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. Sources said there are concerns that the feature may increase incidents of online frauds, phishing, digital arrest, scams, and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. The sources further said that the ministry has directed Meta to furnish a detailed explanation on this feature within 3 days and not roll out the feature until consultation on the matter is over. Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
2: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 20th of February to curb seasonal air pollution in the national capital. We have a report.
5: Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited. The government has also announced that parking charges at authorized parking facilities will be doubled from 1st November to 28th February, while 50% of employees in government and private offices will work from home from

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायामशालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया।

गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहाँ क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहाँ गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आज़ादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे। आज़ादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4थी लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: वादा किसाने किसान अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ लेंगे। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब जीआई टैग मिल गया है।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लोक रजधार के कार्यक्रम में आज हम आपको मिठाईलाल चक्रवर्ती और संजीव सिन्हा के गाए बुंदेली लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मिठाईलाल चक्रवर्ती के स्वर में ये बुंदेली लोकगीत। उससे पहले ये संदेश।
2: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
3: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
2: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।

लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती के गाए बुंदेली लोकगीत। अभी आपने इनके स्वर में ये पारंपरिक कृष्ण लोक भजन सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये बांबुलिया।

लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मिठाईलाल चक्रवर्ती के गए बुंदेली लोकगीत। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं संजीव सिन्हा के गए बुंदेली लोकगीत।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक रसधार, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं संजीव सिन्हा के गाए बुंदेली लोकगीत। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये पारंपरिक लोक भजन।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह के की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे लोक रसधार। लोक रसधार में आज आपने संजीव सिन्हा के गाए बुंदेली लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी की जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। प्रस्तुत है नाटक खो गया सब कुछ।
3: यही कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक फार्मा कंपनी की दवाइयां बिकवाने कभी इस डॉक्टर तो कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना?
4: हाँ यार, ये टाई लगाकर हाथ में बैग लेकर चलना कभी कभी तो बोरियत जैसा लगता है यार।
3: है, और जब देखो तब बॉस समीर का फोन आ जाता है।
4: रे बाप, क्या कहा भाई तूने? ओए 10:30 बज गए, जल्दी तैयार हो, फोन आता ही होगा उसका।
3: ओ
5: हेलो
6: हेलो
5: हेलो
6: राहुल, 10:30 बज गए हैं, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे।
7: सर सर, रास्ते में हूँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ।
5: राहुल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
7: क्या हुआ सर?
5: मैंने तुम्हें लैंडलाइन पे फोन किया है, अभी तक घर पर हो क्या? सारी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे?
7: सॉरी सर।
5: व्हाट सॉरी? और ये विजय कहाँ है?
6: सर विजय भी मेरे साथ है।
5: सुनो, तुम दोनों जल्दी से ऑफिस पहुंचो।
6: यस सर।
4: ये रामू को देखो, हमें देखकर ऐसा मुस्कुरा रहा है जैसे कह रहा हो आज तो आप दोनों की खैर नहीं। समीर सर आज बहुत गुस्से में हैं।
3: तो क्या हुआ? अगर समीर सर सख्त हैं तो हम भी मस्त हैं। एकदम ठंडा कर देंगे, ठंडा, क्या समझे? चलो चलते हैं बॉस के चैम्बर में।
4: हाँ चलो।
5: यस, कम इन।
8: गुड मॉर्निंग सर।
5: क्यों, ये टाइम है ऑफिस आने का? कब तक तुम दोनों को बचाता रहूं मैं? अरे मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है।
3: सॉरी सर, सर वो क्या है ना, आप तो जानते हैं सर कि अब हम दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई है।
5: ये क्या बकवास कर रहे हो?
4: अरे सर, आपने भी तो हमारी जितनी उम्र में कुछ उल्टा सीधा किया ही होगा ना सर, मस्ती की होगी। अब हमारे खेलने कूदने के दिन है तो हमें क्यों रोकते हैं सर, एंजॉय करने दीजिए ना।
3: सर क्या है ना, सच बताऊं सर, आज हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें मिलने का टाइम दिया सर, और वही टाइम ऑफिस आने का था सर। क्या करते सर, बस दिल के हाथों मजबूर थे हम।
5: देखो तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो वरना पछताओगे।
4: समीर सर, हम माना कि हम ऑफिस 1 घंटा लेट आए हैं, तो क्या हुआ, हम 1 घंटा देर तक काम कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है सर।
3: सर आप ही तो हैं जो हमें समझ सकते हैं, वरना आज तक हमारे डैडी हमें नहीं समझ सके।
5: क्या?
3: कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
5: देखो ये लास्ट वार्निंग है, तंग आ चुका हूं तुम दोनों की हरकतों से। अरे अब तो डॉक्टर्स भी परेशान हैं तुम्हारे झूठ बोलने से।
4: अरे सर नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। क्या
5: फिर वही झूठ? अरे सच्चाई का सामना करना सीखो, समझे? और अब डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओ जिन्हें आज विजिट करना है, और फिर मुझे दिखाओ।
3: यस सर।
4: जी सर।
3: विजय, लंच टाइम हो गया यार, चलो साथ में लंच करते हैं।
4: यार राहुल, यार कब तक अब हम ये 15,000 रुपये की नौकरी करते रहेंगे यार? वही घिसे पिटे दिन, क्या कभी अच्छे दिन भी आएंगे हमारे?
3: चल चल, पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं। यार एक आइडिया है।
4: कौन सा आइडिया है?
3: क्यों ना हम अपनी फार्मा कंपनी खोल लें?
4: अबे क्यों मजाक कर रहा है यार? अबे पैसे हैं तेरे पास, कंपनी खोलेगा?
3: पैसे की चिंता छोड़ विजय, बस तू हाँ कर, पार्टनरशिप में काम करते हैं। अबे पैसा कमाएंगे, लाखों बनाएंगे।
4: अच्छा प्लान तो बेटा, क्या प्लान है तेरा?
3: देख मेरी पहचान की एक लैब है, वहां दवाइयां बनती हैं, वहीं से हम थोक में दवाइयां खरीदेंगे और अपनी कंपनी का लेवल लगाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे। और वैसे भी सारे डॉक्टर्स तो हैं ही अपनी पहचान के, रातों रात अमीर हो जाएंगे यार, ऐश करेंगे ऐश।
4: यार राहुल, नकली दवाइयों के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए?
3: नहीं यार, पैसा सबको दबा देता है, माल होना चाहिए जेब में, बस यूं समझ लो कि दुनिया अपनी मुट्ठी में है।
4: अगर ऐसी बात है तो मिलाओ हाथ और आज ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
3: यब्बा।

0: हेलो सर।
1: क्यों विजय, डॉक्टर बंसल ने तुम्हें मिलने का टाइम दिया था?
0: हाँ सर, आज डॉक्टर बंसल से 2 बजे का अपॉइंटमेंट है।
1: और अभी क्या बजा है?
0: 3 बजा है सर।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर के वक्त की कीमत नहीं समझते हो?
0: सॉरी सर।
1: अभी डॉक्टर बंसल का फोन आया था मेरे पास।
0: क्या कहा सर उन्होंने?
1: यही कि राहुल और विजय को अब कभी मेरे पास मत भेजना। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी, अब टर्मिनेट करता हूं तुम दोनों को। नालायक, झूठे, मक्कार कहीं के।
0: सॉरी सर, सर बस सर एक चांस और सर, प्लीज सर।
2: क्या हुआ, क्या हुआ विजय?
0: नौकरी गई और क्या।
2: यानी दवा की फार्मेसी खुल गई विजय, नाम होगा RV फार्मा।
3: हाय राहुल। हाय विजय।
4: कब से तुम दोनों को फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही है फिर भी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
2: अरे बस यूं ही स्वाति, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इस दुनिया में आए हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, है ना स्वाति?
4: क्या मतलब तुम्हारा?
2: देखो, जो लोग रिस्क उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है, दौलत उनके पीछे भागती है।
4: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रिस्क, कामयाबी, दौलत, क्या है ये सब?
5: विजय तुम बताओ बात क्या है?
0: मधु, बड़े शहरों में रहने वाले छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्या समझी?
5: तो सच नहीं बताओगे, क्या हो गया है तुम दोनों को?
0: अरे हम दोनों ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, नौकरी छोड़ दी है हमने।
5: क्यों? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ दी क्यों?
6: डार्लिंग, ये रिस्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम दोनों टेंशन मत लो।
5: तो अब क्या करोगे?
0: अरे हम तो अपनी फार्मा कंपनी खोल चुके हैं, अब तुम देखना हमारा घोड़ा सबसे आगे होगा और बाकी सब पीछे। ये रिस्क हमने तुम दोनों के लिए लिया है, हम नहीं चाहते शादी के बाद तुम दोनों पैसों के लिए तरसो।
2: अरे हम चाहते हैं कि जिस चीज पे तुम हाथ रख दो वो तुम्हारे पास चल कर आ जाए, समझी डार्लिंग?
4: जो भी करो सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो पूरे के चक्कर में सब कुछ गवा बैठो।

0: बधाई हो विजय, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। आज वो खुशी का दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था।
1: हाँ यार राहुल, आज हम अपनी फार्मा कंपनी की दवाइयां लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: ए चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग
0: डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम हमने दवाई के कुछ सैंपल्स दिए थे, लेकिन सर मार्केट में कोई डिमांड अभी तक नहीं आई।
2: ओ यस, आपकी कंपनी की जो दवाइयों के रिजल्ट आ रहे हैं ना मिस्टर राहुल, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और इन दवाइयों की वजह से मरीजों को गड़बड़ हो रही है। सो आई एम सॉरी, आगे से तुम्हारी दवाइयां मैं नहीं लिख पाऊंगा।
0: डॉक्टर सलूजा, डॉक्टर साहब आप हमारी दवाइयों पे शक कर रहे हैं? डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर रावत और डॉक्टर अखिलेश, ये सब के सब हमारी कंपनी की दवाइयां लिख रहे हैं सर, और पेशेंट भी उनके पास बहुत ज्यादा है।
2: सो ठीक है ना मिस्टर राहुल, उन्हीं डॉक्टरों के पास जाइए आप। बट आई एम सॉरी, मैं आपकी दवाइयां नहीं लिख सकता।
0: ओके।
3: चल विजय, कहीं चलकर चाय पीते।
1: हाँ चलो।

0: यार राहुल, आज एक महीना हो गया हमें काम करते हुए और कहीं से भी अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। यार माँ ने अपने सोने के कंगन और हार बेचकर पैसे दिए थे, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब क्या होगा यार, इससे तो अपनी वो 15,000 की नौकरी अच्छी थी। काश समीर सर की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज अपना ये हाल ना होता। यार
1: दिल छोटा ना कर भाई, सब ठीक हो जाएगा यार। अब ऐसी बातें करेगा तो हिम्मत टूट जाएगी भाई। अब कंपनी खोली है तो इसे चलाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, करेंगे। अरे ये देखो, स्वाति और मधु भी होटल की तरफ आ रही
2: है। अरे वाह विजय, राहुल व्हाट अ सरप्राइज, अकेले अकेले चाय पी जा रही है। हम दोनों तुमसे ही मिलने आ रहे थे, अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए।
1: क्यों, क्या कुछ खास बात है?
3: हाँ है तो खास बात। खुशी से उछल पड़ोगे।
1: बताओ क्या बात है?
3: बात ये है कि हमारी दोस्ती को काफी समय हो चुका है और अब मम्मी डैडी हमारी शादी की बात चला रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों भी अपने मम्मी डैडी से शादी की बात कर लो, क्या समझे?
1: इतनी जल्दी शादी?
2: ये जल्दी नहीं, सही समय है शादी का।
1: देखो स्वाति और मधु, शादी तो हमारी तुमसे ही होगी, है कि नहीं? बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए।
2: कितना वक्त चाहिए और क्यों चाहिए?
0: मधु बस सिर्फ 6 महीने, तुम दोनों हमारा साथ दे सकती हो क्या प्लीज?
3: तो हमें करना क्या होगा?
1: मैं बताता हूँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने इन खूबसूरत हाथों से डॉक्टर्स को गिफ्ट देना होगा। क्यों विजय, ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, बस और क्या, इतना छोटा सा काम है।
2: बस इतना सा काम, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं।

0: राहुल, ये कौन सी नई चाल है तेरी? जिनसे हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल डॉक्टर्स को रिझाने के लिए करेगा तू?
1: देख यार विजय, आज के इस दौर में जीना है तो कुछ नया जरा हट के करना पड़ेगा। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है कि नहीं?
0: ये क्या स्वाति और मधु इस काम में हमारा साथ देंगी?
1: देख भाई, स्वाति को मुझसे और मधु को अगर तुझसे शादी करनी है तो दोनों को हमारा साथ देना ही होगा। क्या समझे? अरे हम अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, ये आखिरी मौका है, वरना कोई हमें भीख भी नहीं देखा। समझे कि नहीं?
0: सही बात है।

0: मधु और स्वाति दोनों अपना काम समझ रहे।
1: बताइए
0: कि आगे दोनों को करना क्या है।
1: क्या?
0: हाँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ डॉक्टर्स को ये बुके देना है और साथ में ये गिफ्ट देना है।
1: ठीक है।
0: हाँ, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना तुम दोनों।
1: क्या?
0: कि स्माइल इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि डॉक्टर्स तुम्हें देखते ही इम्प्रेस हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, बस इतना छोटा सा काम है, फिर देखना डॉक्टर कैसे हमारी कंपनी की दवाइयां लिखना शुरू कर देगा। ओके
1: ओके,
0: नाउ यू कैन गो एंड ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।

0: May I come in, doctor?
1: Yes, come in, please.
0: Hello, doctor. Dr. Saluja, ये हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट।
2: Ah, that's really beautiful. बिल्कुल आपकी ही तरह खूबसूरत हैं।
0: Thank you, doctor.
2: Your name?
3: जी, मैं मधु और ये स्वाति।
2: और कंपनी का?
3: जी, आरवी फार्मा कंपनी।
2: ओके, आरवी फार्मा कंपनी। मैं लिखूंगा आपकी कंपनी की दवाइयाँ।
3: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू
0: डॉक्टर।
2: ओह, इट्स माय प्लेजर।

देखा विजय, देखा अपना फॉर्मूला हिट हो गया। स्वाति और मधु ने तो कमाल कर दिया यार। अब देखो कैसे ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं।

0: रुको रुको फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ स्वाति, कहाँ हो?
1: हाँ कॉलेज में हूँ। क्यों, क्या बात है?
0: अरे बात ही कुछ ऐसी है कि सुनकर खुशी से जूं उड़ोगे तुम।
1: ऐसी भी क्या बात है, अब जल्दी भी बताओ।
0: आज हमारी तरफ से तुम्हारी और मधु की पार्टी है। हाँ।
1: पार्टी? कहाँ पार्टी दे रहे हो जनाब?
0: अरे कहाँ, मतलब क्या, होटल सरताज में और कहाँ।
1: राहुल, इतने बड़े होटल में? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना?
0: अरे नहीं, डालेंगे एकदम सच। बस तुम तैयार हो जाओ फटाफट। कम ऑन
1: बिल्कुल।
0: फ्राई।

0: विजय, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होटल सरताज को मैं अपने सपनों में देख रही हूँ।
1: मधु, अब सपने देखना बंद कर दो। अब तो सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है।
2: राहुल, इतनी महंगी पार्टी देने की क्या जरूरत थी?
3: जरूरत तो थी। अगर तुम दोनों हमारा साथ न देती तो आज ये हमारी कंपनी बंद हो चुकी होती, क्या समझी? और सुनो, एक खुशखबरी और है।
2: क्या?
3: हम सब के लिए है।
2: वो क्या है? अरे जल्दी बताओ ना।
3: बताता हूँ। सुनो, हम कल एक बढ़िया सी लग्जरी कार खरीदने वाले हैं।
2: वाओ, कितना मजा आएगा ना। अपनी कार से घूमने का मजा ही कुछ और है। क्यों मधु, है ना?
0: हाँ, वैसे राहुल, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो तो बहुत ही चालाक। अपना काम निकलवाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो।
3: क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मेरा और स्वाति का क्या खूब इस्तेमाल किया है। तुमने हमें डॉक्टर्स के पास भेजकर हमारी खूबसूरती को बड़ी आसानी से कैश करा लिया, वरना होटल सरताज में पार्टी देने के तो तुम सोच भी नहीं सकते थे।
1: मधु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
0: सच बता रही हूँ। अरे मैं तो राहुल की तारीफ ही कर रही हूँ।
3: हाँ, तारीफ। मधु मेरी तारीफ भी कर रही है और ताना भी मार रही है। इसे कहते हैं नहले पे दहला।
1: चलो कुछ खा भी ले।
2: हाँ, चल।
3: वेटर,

0: स्वाति, माँ को आज डॉक्टर को दिखाना है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
1: हाँ, माँ को तेज बुखार है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
0: हाँ।
2: देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, माँ जी को हमने देख लिया है। आप बस ऐसा करिए कि ये जो दवाइयाँ इस पर लिखी हुई हैं, ये लाकर उनको दे दीजिए और उनको जल्दी ही आराम आ जाएगा।
0: जी माँ, ये दवाई खा लो।
1: अरे, दवाई खाते ही माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ,
0: डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी देखिए, माँ को क्या हो गया है?
1: माँ, क्या हो गया? माँ, माँ,
2: What happened? Oh shit! Nurse, get the oxygen, please. जल्दी लाओ।
1: क्या हुआ माँ को? माँ, डॉक्टर क्या हुआ माँ को?
0: डॉक्टर, माँ अभी तो अच्छी थी। माँ बोलो, क्या हुआ तुमको?
1: माँ,
2: calm down, calm down. आप लोग शांत रहिए और प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए।
1: मधु, मेरी बहन, माँ को क्या हो गया? देखो कैसे कर रही है माँ। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना।
0: क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है मेरी माँ को?
1: माँ,

0: बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो माँ? बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो कुछ, बोलो माँ, माँ कुछ।
1: I'm really sorry, Miss Swati. हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं सके। स्वाति, आप होश में आइए। मिस स्वाति, डॉक्टर्स कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। नर्स, कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने, मुझे लाके बताइए। ओह शिट, ये तो एकदम नकली दवाइयां हैं। इन नकली दवाइयों की वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई है। तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, यह आरवी फार्मा कंपनी है।
0: क्या कहा डॉक्टर? आरवी फार्मा कंपनी की
1: दवाइयाँ? जी हाँ मिस स्वाति, आरवी फार्मा कंपनी की ही दवाइयाँ हैं ये।
2: आरवी फार्मा कंपनी,
0: यानी वो राहुल और विजय दोनों हमारी माँ के कातिल हैं? इतना बड़ा धोखा!
3: स्वाति, क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? कैसे तबीयत है माँ की? स्वाति,
0: मेरी माँ के खातिर अब हमदर्दी दिखाने आए हो?
3: ये क्या कह रही हो स्वाति, हम तुम्हारी माँ के कातिल कैसे?
2: हाँ, तुम दोनों मेरी माँ के कातिल। तुम दोनों दवाइयाँ नहीं, जहर बनाते हो, जहर। डॉक्टर, यही दोनों आरवी फार्मा कंपनी के मालिक हैं।
1: आई सी, तो ये हैं जो नकली दवाइयों का अब धंधा करते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं।

0: हेलो, पुलिस स्टेशन।
1: हाँ जी, कहिए, क्या बात है?
0: मैं चंचल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, जल्दी आइए, यहाँ नकली दवा की डोज से एक मौत हो गई है।
1: आप कौन है?
0: जी, मेरा नाम मधु है। मेरी माँ को बहुत तेज बुखार आया था, उन्हें आरवी फार्मा कंपनी का इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मौत हो गई।
1: देखिए मधु जी, आप रोइए नहीं, हम आ रहे हैं। वो इंजेक्शन की शीशी और सिरिंज वगैरह सब वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है?
2: ये क्या कह रही हो मधु? हमारा कोई कसूर नहीं है और हमारी तो शादी होने वाली है, हम क्यों तुम्हारी माँ को मारेंगे?
0: शादी, और वो भी मेरी माँ के कातिल से? शर्म नहीं आती? ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ के कातिल से शादी करेगी?
3: अब तुम दोनों को सलाखों के पीछे जाना होगा।
2: नहीं,
3: अमीर बनने का शौक था ना, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक था ना।
4: स्वाति, स्वाति, तुम भी शक कर रही हो मुझ पे। अरे, मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझी पर शक कर रही हो?
3: शक नहीं राहुल, यकीन है, यकीन कि तुम मेरी माँ के कातिल हो।
4: स्वाति,

0: आपने फोन किया था मैडम?
1: हाँ, हमने ही फोन किया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर, ये नकली दवाइयां बनाने का कारोबार करते हैं।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ बोली है, झूठ बोली है।
3: नहीं इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको सारी सच्चाई बता देंगे।
1: हाँ
0: जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनकी कंपनी में जो दवाइयां बनती हैं वो एकदम नकली दवाइयां हैं। इनकी दवाइयां खाकर किसी की भी जान जा सकती है, जैसे इन लड़कियों की मां की जान चली गई। डॉक्टर इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए।
4: ओके।
0: और हवलदार इन दोनों को अरेस्ट कर लो।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर। स्वाति मधु ये क्या कर रही हो, कुछ तो रहम करो। अरे हमें भी तुम्हारी माँ के मरने का दुख है। प्लीज स्वाति, प्लीज मधु, मधु
5: हमें बचा लो, मधु हमें माफ कर दो। आई लव यू मधु, आई लव यू।
0: चलो अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना, समझे?
1: ले जाइए इंस्पेक्टर, इन दोनों कातिलों को हमारी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। जो दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते।
2: स्वाति तुम मुझे कातिल कह लो, कह लो कातिल, मगर प्लीज प्लीज मेरी मोहब्बत पे शक न करो। स्वाति प्लीज, स्वाति स्वाति।
3: विजय आज हमने अपनी माँ को खोया है, मगर तुम दोनों ने लालच में आकर आज अपना सब कुछ खो दिया है, अपना मान सम्मान और अपना प्यार।
2: स्वाति

0: अभिया अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा नाटक सुन रहे थे खो गया सब कुछ। इसके संयोजक थे राकेश ढौंडियाल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: राहुल विवेक सावरीकर, विजय योगेश उमाठे, बॉस अमन अहमद खां, डॉक्टर सलूजा मयंक खन्ना, इंस्पेक्टर अर्पित पांडे, स्वाति अनामिका सागर और मधु आद्या मुंशी। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से ही किया जा रहा था।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक खो गया सब कुछ। लेखक थे अलमासुद्दीन सिद्दीकी। प्रस्तुतकर्ता थे चितेंद्र स्वरूप राजन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दो दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन

0: में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में एक अनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग की ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गयी और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गयी। वह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदे मातरम, गौरवगान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका दोस्त हरीश मेहरा। आप सभी को हमारा नमस्कार। वंदे मातरम वंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक गीत है जिसमें बांग्ला और संस्कृत भाषा का प्रयोग मूल रूप से किया गया है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में आपके उपन्यास आनंदमठ में किया गया। वंदे मातरम के जय घोष और गीत ने सदियों से सुप्त भारत को स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्ति और प्रेरक का काम किया। आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को एक सन्यासी द्वारा गाया गया और इस गीत की मूल धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई। इस गीत के पहले दो पदों को गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट और 5 सेकंड। इसके सभी 6 अंतरे गाने के लिए कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होती है। सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, जिसमें उस समय के सबसे मशहूर 10 गीतों को चयनित किया जाना था, इसके लिए दुनिया भर से लगभग 7,000 गीतों को चुना गया था। बीबीसी के अनुसार 155 देशों के लोगों ने इसमें मतदान किया। उसमें वंदे मातरम गीत शीर्ष 10 गीतों में से दूसरे स्थान पर रहा। और इस गीत की एक खास बात और आपको बता दें कि बांग्ला भाषा को ध्यान में रखकर अगर बात की जाए तो वंदे मातरम का शीर्षक वंदे मातरम होना चाहिए, ना कि वंदे।

मातरम। हिंदी व संस्कृत भाषा में वंदे ही सही शब्द है, लेकिन यह गीत मूल रूप से बांग्ला लिपि में लिखा गया और बांग्ला लिपि में वा अक्षर है ही नहीं, इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे वंदे मातरम लिखा था, जबकि संस्कृत भाषा में इसे वंदे मातरम का कोई शाब्दिक अर्थ ना ही दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। इसे संस्कृत भाषा के व्याकरण की दृष्टि से इसे वंदे मातरम की जगह वंदे मातरम उच्चारित करना ही सही इसका उच्चारण है, जिसका अर्थ होता है माता की वंदना करना। देवनागरी लिपि में भी इसे वंदे मातरम लिखा और पढ़ा जाता है और इसका सही उच्चारण भी यही है। गौरवगान की डेढ़ सदी में आज बस यहीं तक। कल फिर वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी आपके लिए कुछ खास लेकर आएगा। अब आपसे चाहते हैं अनुमति।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे विश्व दर्पण। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। श्री मिश्री ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के एक मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शनी सेल 4 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले आईएनएस सुदर्शनी ने ब्लाटीमोर बंदरगाह पर प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया। मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने माइग्रेंट 2.0 पोर्टल की भी सराहना की, जो सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। कतर सरकार के अनुसार दोनों पक्षों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 9 जुलाई को अंतिम संस्कार के बाद चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा वार्ता ठीक तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीकी वार्ता भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण की वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में 14 सूत्री सहमति पत्र पर अमल का मुद्दा मुख्य रहा। ईरान और कतर ने ईरान की $6 अरब की परिसंपत्ति को मुक्त करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव पर भी विमर्श हुआ। ईरान ने कहा कि जहाजों को वही मार्ग अपनाना चाहिए जिसे ईरान ने मंजूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और सारी वार्ताएं कतर और पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से हो रही है। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागे जिससे रिहायशी इमारत

0: में आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कई लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तीन और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित लोगों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई और लगातार 17 मैचों में अजय रहने का सिलसिला जारी रखा। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुगा ताकायची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है सारंगा। सारंगा कार्यक्रम में आपके फरमाइशी नगमों को लेकर आकाशवाणी के स्टूडियो में है आपके साथ आपका दोस्त हरीश मेहरा। आप सभी को हमारा नमस्कार। आपके फरमाइशी खतों को पढ़ना शुरू करें और ये जो चिट्ठी हमारे हाथ में है इसे लिखने वाले हैं ग्राम पिंडरई से जिला मंडला से। आपने ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। सुमत कुमार जैन, मीना जैन, वरुण जैन और कबीर जैन। बेमित्रा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, बेटी लक्की सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को, सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी। ग्राम सर्री तहसील कोलारी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी, दीपिका सैनी, गंगा प्रसाद सैनी। लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रोहन रिया, रणवीर सिंह बैस, संजय पगारे। प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप, पिंटू, यथार्थ कुमार खंडाले और आपके परिवार के सभी सदस्य। कुंदानगर खरगोन से धुबराश सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी सोनवणे, प्रियांश सोनवणे, आशीष सोनवणे, कृष्णा सोनवणे, शुभम सोनवणे और आपके सभी दोस्त। लता मंगेशकर को सुनना चाहते हैं आपके साथ सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी। बिलहरी बरखेड़ा कटनी से माँ लक्ष्मी ठाकुर, संतोष ठाकुर, शारदा, सपना ठाकुर, सत्यम, शिवम ठाकुर, सौरभ अन्नू, अब्बू और अशोक और आपके सभी परिवार के सदस्य। आप सुनना चाहते हैं खामोशी फिल्म का गीत, आपके साथ पसंद आपने भी लिख भेजी है। खामोशी फिल्म के लिए गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी भी सुनना चाहते हैं खामोशी फिल्म का गीत। तो लीजिए कार्यक्रम सारंगा की शुरुआत में आप सभी की मिली जुली फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं खामोशी फिल्म का गीत, आवाज़ लता जी की, शब्द रचना गुलजार की और गीत को संगीतबद्ध किया हेमंत कुमार ने।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सारंगा कार्यक्रम में इस गीत के लिए आप सबकी फरमाइश हमारे पास आई। बरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवीनकर और धीरज सब्बा शेले। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की।

कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी, मीनू राज श्रीमाली भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय भी सुनना चाहते हैं इसी गीत। डुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय भी सुनना चाहते हैं।

आप सभी की फरमाइश पर सारंगा कार्यक्रम में दोस्ताना फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में हमने आप तक पहुंचाया। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे आप सभी। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही और सृष्टि राही। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और कार्यक्रम में अब जो फरमाइश लिख भेजी है वो लिखने वाले श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, सरोज नगर अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, सोएब खान, पोइत्रा मुस्तफा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं प्रीति सागर को जूली फिल्म के लिए। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई से लक्ष्मण रेगवार, विनीता रेगवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश, लल्लू, हल्ले, ऋषि और आपके सभी दोस्त भी सुनना चाहते हैं जूली फिल्म का गीत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। लिखने वाले श्रोता हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, नेहारिका और वंश बत्ता। इसी फिल्म के लिए आपकी भी फरमाइश हमारे पास आई है। आपने लिखा है राजपुर से। लिखने वाले आपके सभी साथी हैं घीसू दिलवाले, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आपके साथ सुनने को ख्वाहिशमंद सौरभ शर्मा भी हैं। लीजिए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं प्रीति सागर की आवाज़ में जूली फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा हृदयनाथ ने और धुन बनाई राजेश रोशन ने।

सारंगा कार्यक्रम में अब आप सबकी फरमाइश आई है मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में कोई भी युगल गीत सुनने की। यंग रेडियो लिसनर जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सतेंद्र जैन सुनना चाहते हैं। मुकेश जी और लता जी को आपके साथ सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रज क्रांत सारथी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपका खत आया है। आपने लिखा है कि आप सुनना चाहते हैं पूर्णिमा फिल्म का गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिब राही, महराज जहां, आशा रेडियो श्रोता संघ, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहनकर राही, श्रीमती सरिता गवहनकर, प्रिंस एकांश गवहनकर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवहनकर, श्वेता सुमित गवहनकर, कुमारी ध्वनि गवहनकर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहनकर और आपके परिवार के सभी सदस्य। लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको मुकेश और लता जी की आवाज़ में सुनवाते हैं पूर्णिमा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

सारंगा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब फरमाइश करते हैं आप सभी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और आपके परिवार के सभी सदस्य। सहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा भी सुनना चाहते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। किशोर कुमार को सुनने के लिए आपने भी हमें अपनी पसंद लिख भेजी है, मगर लोड छत्तीसगढ़ से पूनम राज साहू, राज तेजेश्वरी साहू, राज श्री और राजवीर साहू के साथ आपके परिवार के सभी सदस्य। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरज छमकीजे, आरज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ खान, बेगम नेहरत परवीन, नूर महल महसूल से ही हुमेजा नाज, सुमेरा नाज, आबिया नाज, अरहन बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू भी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार को। लीजिए आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। आवाज किशोर कुमार की, गीतकार अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं सारंगा कार्यक्रम में आप सभी की फरमाइश हमारे पास आई है। लिखने वाले श्रोता है मोर टक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिष्का, आदित्य, मानस पटेल और आपके परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्परानी, आकाश कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं बेताब फिल्म का गीत। अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, ललूराम पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार। आप भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार को। डोंगरगांव से ये खत आया है हमारे पास। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आपने लिखा है। राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है। ग्राम पंचायत बठेना से बलकर्ण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चाटौस से सारा गांव से ये खत आया है। लिखने वाले श्रोता हैं सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ग्राम कहकहा जिला पन्ना से फरमाइश आई है। लिखने वाले श्रोता हैं प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अम्बेश, कृष्णा और प्रांशी सेन।

आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को, पसंद आपकी भी है। जय नरसिंह देव एफएम रेडियो ग्रुप करकबेल से कमलेश कहार, श्रीमती कविता, कल्पना कहार, अंकिता, कल्पेश कहार, अंकित, वर्षा, बादल, आकाश, नमन कहार, दीपक, सोनी, जय हिंद हलवाई, शानू, आरती, अमन और आशीष। लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में बेताब फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। नर्मदा कॉलोनी जिला मंडला से सिया शरण ज्योतिषी पुष्पा गोल्डी रोली लकी और श्वेता परू के साथ ये खत आया है। जिला रायसेन खापरखेड़ा से आरती ममता गोमती तुलसीराम साहू मुकेश कुमार साहू हेमंत कुमार साहू नोनीलाल साहू और सुमित्रा बाई साहू।

सारंगा कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे बेताब फिल्म से। अब आपके दोस्त हरीश मेहरा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:58 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन और श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 147 गाड़ियों के काफिले में 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे के बालटल रूट के 2,312 लोग और पहलगाम रूट के 2,510 लोग शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। सूची में प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिनमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए, वहां हवा केवल बहती नहीं कितनी ही स्मृतियां साझा करती है कि कभी ऐसे ही अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी थीं, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया था, कि कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे, तभी तो ये ऋषिपुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। श्रोताओं, हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार एक पौधा ही है, क्योंकि एक पौधा केवल आज को ही नहीं आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम और आप मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे, बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की, पेड़ों से जुड़ी आपकी यादों की और आपके संकल्प की। बताइए हमें कि आपकी जिंदगी का वो एक पेड़ कौन सा है जिससे आपकी सबसे आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं। किसी पेड़ से आपका कोई खास रिश्ता हो तो बताइए हमें, और पेड़ों से जीवन का क्या रिश्ता है ये भी बताइए। साथ ही बताइए हमें कि वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, क्या संकल्प है आपका इस बरस। हमें उम्मीद है कि आपकी बात किसी न किसी के मन में हरियाली का एक नया बीज जरूर बोएगी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं खेरो कला, ग्राम खेरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ। बहन जी, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: अरे सुनीता सिंह, 2 साल से इंतजार किया है आपका, जो है सुनीता सिंह से बात हो जाए।
0: जी जी जी जी,
1: मैं झूठी बोल रहा, आप सच बोल रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं आपका जो है आवाज अच्छी लगती है बोलने की, और आपको बोलने का आइडिया भी बड़ा अच्छा है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश नायक जी कैसे हैं? पेड़ों के बीच खेलते भी हैं, पेड़ों पर चढ़कर भी खेलते हैं, है ना? तो कोई बचपन की याद हो, किसी पुराने पेड़ की याद हो तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं।
1: अब पेड़ की याद तो घुसने, पौधे तो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं बहन जी। यहाँ के छोटे में बस वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते, गिल्ली डंडा कहीं को टीजिए, यही याद है। और पेड़ काटने वाले एक दो आदमी नहीं है, कई लोग काटते हैं। अब बताओ वन या जंगल कैसे रहे, और इसका बहुत जरूरी है, इसलिए शासन भी जो है इसको गौर कर रही है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, उसकी परवरिश करो। ये लगा देने से कुछ नहीं होता है, उसकी परवरिश भी करनी पड़ती, जानवरों से बचाया, बकरियों से, कहीं गाय भैंसों से
0: जी,
1: या उसकी जो है तारबारी भी करनी पड़ती है बहन जी, सुनीता जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो रमेश जी ये बताइए कि आपका क्या संकल्प है, आप कितने पेड़ लगाएंगे इस बार?
1: नहीं, हमने लगाए भी है और भी जो है लगाएंगे हम।
0: कौन कौन से पेड़ लगाए हैं?
1: ऐसे जगह छोटे मोटे पेड़ लगाना नहीं होता है, पेड़ होते हैं।
0: तो आप कह रहे हैं कि नीम, पीपल, बड़, है ना, आंवला, इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में
1: हो, जैसे ये खटाल पेड़ होते हैं, ये 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की उम्र हो,
0: जो फायदा है वो लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
1: जी जी जी जी। अब आज फार्मेसी प्रोग्राम तो है नहीं बहन जी।
0: नहीं, आज तो हमारी पसंद का गीत आप सुनेंगे, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
1: सुनीता जी
0: जी,
1: वो गीत हम ठीक नहीं, हम फरमाइश नहीं बता रहे, लेकिन कोई गीत सुनवाना तो रफी की आवाज हो या लता की आवाज हो, इनमें से कोई पुराना गीत सुनवा दे आप। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, इनका कोई सानी नहीं है, ना कोई गायक हुआ है ना होगा।
0: बिल्कुल। तो रमेश जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। अंबेडकर चौक, टेगर वार्ड, खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम। धन्यवाद
0: राम सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपकी
1: मैम।
0: गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर? हम वन महोत्सव मना रहे हैं।
1: वन महोत्सव बहुत जरूरी है। वन महोत्सव इस बार हमारे क्षेत्र में, खुरई विधानसभा क्षेत्र में, 1 लाख पेड़ों का लगाना निश्चित हुआ, तय हुआ है, जिनमें आपके फलदार वृक्ष ज्यादा रहेंगे। और हर साल तो लगते हैं, और हम व्यक्ति के तौर पे एक नीम का पेड़ हमने लगाया था भोपाल में। उस समय हम लोग भोपाल रहते थे,
0: जी जी
1: स्कूल थी 12 महल के पास।
0: जी
1: आज वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, फल फूल रहा है
0: क्या बात है
1: जी। और जी है मैम के नीम भारत का वेद है
0: जी जी क्या बात है
1: जी। नीम भारत का वेद है। नीम, आंवला और आपका वो जामुन का पेड़ जी लगा है तो बहुत अच्छा, फलदार भी है और आपके लाभदायक भी है। एक पेड़ लगाया जामुन का लगा है हमारे यहाँ, 50 साल पुराना, जामुन के फल भी देता है।
0: जी जी,
1: तो
0: जी
1: जामुन के फल तो बहुत औषधि कारक
0: गुणकारी होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो औषधीय पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे आपने नीम
1: जी
0: की बात की, आंवला, जामुन, इस तरह के अगर पेड़ लगाते हैं तो दोहरा लाभ हो जाता है ना।
1: जी मैम।
0: बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं।
1: बचपन की वो तो बता रही मैडम कि एक पेड़ लगाया था नीम का हम लोगों ने, अभी वो नीम का पेड़ है। एक जामुन का लगाया था, अभी जामुन का पेड़ भी है, बचपना इनके लगभग चल रहा है।
0: क्या बात है, क्या
1: तो
0: बात है।
1: 50 साल पहले हमारे पिताजी वगैरह ना लगाया था,
0: आप
1: हम
0: लोगों
1: लोग
0: ने
1: पौधे से
0: मिलकर लगाया
1: ध्यान
0: था।
1: तरह। आपके आंवला भी लगा है, नींबू भी लगा है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: जामुन भी लगा है।
0: तो देखिए, पिताजी ने पेड़ लगाया, उसके फल आप खाते हैं। आप जो पेड़ लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी, उसका लाभ
1: बिल्कुल
0: लेगी।
1: बिल्कुल
0: इसलिए ये जिम्मेदारी
1: बिल्कुल
0: हमारी होती है कि हम
1: बिल्कुल
0: वृक्षारोपण जरूर करें। तो राम सखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, सनी शर्मा, गंजवासोदा, रायनगर।
0: तो सनी जी कैसे हैं?
1: दीदी बढ़िया है।
0: अच्छे हैं। तो आज के विषय पर क्या कहेंगे हम? वन महोत्सव मना रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पेड़ों से जुड़ी कोई याद अगर आपकी हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
1: पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और छाया देते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पेड़ है वो बारिश को बुलाकर भी ले आते हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी। और कितनी चीजें उनसे मिलती हैं, फल फूल लकड़ी सब कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों से ही जीवन है ना? तो अभी जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा पौधा लगाने का आपने निश्चय किया है?
1: नीम का।
0: नीम का पौधा लगाएंगे, किस लिए?
1: फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी
0: और ऑक्सीजन भी, है ना? बहुत गुणकारी पौधा है नीम का, जरूर लगाना चाहिए नीम का पेड़। और कोई याद अगर बचपन की हो, पेड़ों के साथ तो हमारा बचपन बीतता है, अगर खास तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, है ना? तो बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकते हैं।
1: पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर झूला डालना।
0: सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालना। हाँ
1: दीदी।
0: अभी भी डालते हैं?
1: हाँ दीदी, अभी भी डालता है।
0: क्या बात है। तो देखिए, पेड़ों के साथ एक आनंद है, जीवन का उत्सव है ना? तो हमें बहुत अच्छा लगा सनी जी आपसे बात करके, और जो आपने कहा है कि आपका संकल्प है कि नीम का पौधा आप लगाएंगे, ज़रूर लगाइएगा। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि पौधा लगाने के बाद भूल मत जाइएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को परवरिश की ज़रूरत होती है, पेड़ों को भी परवरिश और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
1: रोज पानी डालना,
0: जी
1: खाद डालना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। रोज पानी डालना, खाद डालना और उसका संरक्षण करना कि उसे जानवरों से कोई हानि ना हो, जानवर उसे खा ना जाए, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार। जानकी गुप्ता, ग्राम भांगवन थानागा, जिला टीकमगढ़ मसरी से बोल रहे।
0: जानकी जी टीकमगढ़ से बोल रही हैं, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और फोन लग जाता तो और अच्छे हो जाते।
0: बिल्कुल, बहुत देर से हमारे श्रोता प्रयास कर रहे होते हैं, और जब फोन लगता है तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया हो, है ना
1: हाँ, रोटी बना रहे थे, इसलिए
0: जी।
1: फोन लगाए तो
0: हाँ
1: लग
0: हाँ
1: गया।
0: रोटियां बना रही थी
1: हाँ,
0: आप?
1: फोन रखे थे
0: अच्छा
1: पास में, लगा नंबर रखे, डाल कर रहे थे, इसलिए लग गया।
0: बहुत अच्छी बात है कि काम के बीच भी आपको आकाशवाणी की सुध रही, याद रखा आपने।
1: रेडियो सुनते रहे थे।
0: हाँ, तो आज के विषय पर क्या कहेंगी? वन महोत्सव पर हम बात कर रहे
1: मैं
0: हैं।
1: ये कहने चाहती कि वृक्ष अपन को लगाने चाहिए, अपन को हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं, और उस वृक्ष वृक्ष की सब वर्षा भी होती है जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो आपके आसपास किस
1: हमारे
0: किस
1: आसपास, हमारे खुद दरवाजे के पास नीम लगी, बहुत बड़ा वृक्ष नीम का।
0: अच्छा नीम का पेड़ है आपके घर के
1: हाँ, और
0: पास?
1: हम अपने आंगन में लगाए, एक मीठी नीम का पेड़ लगाए, एक
0: हाँ
1: गुलाब का पेड़ लगाए।
0: जी, तो इस बरस वन
1: इस साल
0: महोत्सव
1: में
0: में
1: हम और दूसरा पेड़ लगाएंगे, और
0: कौन सा लगाएंगे?
1: नीम ही का लगाएंगे, एक मीठी नीम का।
0: मीठी नीम। तो चलिए, ये तो छोटा
1: हाँ
0: सा पौधा हुआ, लेकिन अगर कुछ बड़े फलदार वृक्ष हम लगाते हैं या कुछ बड़े पौधे लगाते हैं जो कि आगे चलकर बड़े वृक्ष बनते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीपल का कोई पौधा लगा दें, या
1: हाँ
0: आप
1: मुझे सही कहें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी जगह ना
0: अच्छा
1: लगाने
0: अच्छा
1: के।
0: जी, फिर भी गांव में सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी एक स्थान
1: हाँ,
0: पर भी
1: ऐसे
0: लगा
1: वैसे तो
0: सकते हैं।
1: बहुत पेड़ लगे हमारे ऐसे
0: हाँ
1: अगल बगल में, बहुत
0: जी
1: ज्यादा मीठी नीम के लगे, पीपल के लगे,
0: जी
1: बरगद का लगा
0: तो
1: पेड़।
0: देखिए, किसी ने कभी लगाया था तो ये पेड़
1: हाँ,
0: अभी
1: लगाया है
0: है ना, तो ये पेड़ आज
1: अभी
0: आपके लिए
1: अभी
0: हैं।
1: कुछ कुछ कुछ पेड़ के, पीपल के तो छोटे छोटे भी हैं अभी।
0: तो उनको पानी देते रहिए, उनको संरक्षित करिए। और हम ये जानना
1: हाँ
0: चाह रहे थे जानकी जी कि बचपन हमारा अगर ग्रामीण इलाके में बीता है तो पेड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो कुछ याद अगर रोचक सी हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकती हैं
1: हाँ
0: हमसे।
1: रोचक है कि जब छोटे थे हम, तो नीम के अमरूद के पेड़े हैं ना,
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: चढ़ते थे।
0: और अमरूद खाते
1: हाँ, मैं एक
0: थे
1: जाने के बगीचा में लगे थे, तो
0: जी।
1: जाते थे तो उस पर
0: हाँ
1: चढ़ते थे, फिर अमरूद खाते थे और छुपा छुपल खेलते थे पेड़ों पे।
0: वाह वाह वाह, पेड़ों पर आप मतलब
1: हाँ
0: छुपा छुपोवल खेलती थी, बहुत अच्छी बात है। और कई बार तो पेड़ पर बैठकर ही हम फल खाया करते थे
1: हाँ
0: अमरूद के, है
1: मैम, चढ़
0: ना।
1: जाते थे पेड़ों पे।
0: हाँ, मुझे तो याद है कि मैं अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद भी खाती थी और वहीं पढ़ाई भी करती थी।
1: और हाँ, सही कह रही मैम।
0: तो चलिए, पेड़ों की अच्छी याद आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत
1: थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अच्छा भागचंद साहू जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया है, गंज वासोदा में थोड़े बदल हो रहे हैं।
0: तो बारिश आ रही है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मौसम को देखकर ही जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कहें, अपने विचार रखें वन महोत्सव पर, वनों के महत्व पर, पेड़ों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं दीदी, देखो हर व्यक्ति को पेड़ों की कटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बरसात, इसी के कारण से बरसात डिफरेंस हो रही है
0: जी।
1: है आदमी क्या है, वृक्ष वगैरह काट रहे हैं, पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, अपने ऑक्सीजन मिलेगी है और छाया भी मिलेगी इस प्रकार से। उनमें पानी, समय समय पानी दें, उनकी छटाई करें,
0: उसकी परवरिश
1: करें।
0: हमने
1: तो एक नीम का पेड़ लगाया था दीदी।
0: अच्छा,
1: वो अभी लगा है।
0: अच्छा, कब लगाया था?
1: हमने दीदी कम से कम होगा 20 साल हो चुके हैं उसको।
0: वाह, तो ये तो बड़ा हो गया होगा पेड़।
1: अरे बहुत बड़ा है दीदी, इतना अच्छी छांव है उसकी, गर्मी में वहीं बैठते हैं हम।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ हाँ, नीम का पेड़ कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
0: बहुत अच्छा होता है, गुणकारी पेड़ है ना, कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। आप इस बरस कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं
1: दीदी? अब तो हम देखो अब उसका लगाएंगे, आम का पेड़ लगाना चाहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: आम का पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए। हाँ। और एक प्रकार से छाया भी मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 वर्ष पहले और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी देगा।
1: बिल्कुल, आम का पेड़ जरूर लगाएंगे, माँ के नाम लगाएंगे।
0: क्या बात है, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए।
1: बिल्कुल लगाएंगे जी, हमारा वादा।
0: तो भागचंद साहू जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले जो बहुत बड़ा हो गया है, छाया देता है, और इस बरस आप आम का पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस संकल्प को बनाकर रखिए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: गोविंद पाटीदार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: मंदसौर जिले से। तो गोविंद जी, आज हम वन महोत्सव पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वनों का क्या महत्व है? जंगल कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो किस तरह का?
1: वनों का तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है मैम। पहले के जमाने में इतने जंगल थे कि मतलब बिना कहे बारिश हो जाती थी। मतलब अपने आसपास का जो वातावरण रहता था वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता था।
0: जी जी, वन ज्यादा होते हैं तो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं।
1: हाँ,
0: वो
1: आकर्षित करते हैं। हाँ, सही बात।
0: और बारिश तो होती ही है, मिट्टी के कटाव को वो रोकते हैं। तो कौन सा पौधा लगाएंगे इस साल आप?
1: जी इस साल तो हम आम का पौधा लगाएंगे।
0: आम का? अच्छा, तो अकेले लगाएंगे या आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं?
1: जी हमारा तो खेती बाड़ी है जो, हम तो बोले अकेले लगाएंगे। मैं हर साल हमारे तो पौधे लगाने का काम रहता, कभी नींबू का लगा लिया, कभी अपने फूलों के लगा लिया, कभी पीपल का लगा लिया, कभी नीम का लगा लिया, कभी इमली का लगा लिया।
0: अच्छा,
1: तो ये
0: बहुत अच्छी बात है।
1: आप रखे भी रहते हैं मैम, और आगे अपने को फायदा भी है इनसे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी फायदा है, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा है, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। अच्छा, बचपन की कोई याद हो आपको, अगर जंगलों से जुड़ी हुई, वनों से जुड़ी हुई या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई याद हो?
1: याद है, पहले बचपन में छोटे थे तब हमारे दादाजी आम का वृक्ष लगाते थे खेतों पे, तो वो छोटे छोटे वृक्ष जो रहते थे ना, तो उस समय हम वो कलम तारी का जो खेल होता था पहले, जो उस हिसाब से वो खेल याद है बचपन का, हम खेलते थे छोटे।
0: तो आप मतलब पेड़ों पर आप लोग खेलते थे?
1: जी हाँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: है। खेल ही पेड़ के वृक्ष का ही था मैम।
0: तो क्या करते हैं इस खेल में?
1: अरे जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, वो चार पांच जो साथ में अपने मित्र लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर वृक्ष पे चढ़ के उस लकड़ी को फेंकते थे, इतना दूर फेंकते थे कि जहाँ तक जा सके अब उसको फेंकते, तो वो एक जो लड़का जो रहता वो उसको लेके ना वापिस वृक्ष के नीचे रख देता उस लकड़ी को, और ऊपर पेड़ पे चढ़ के हम सबको पकड़ने के लिए आते थे।
0: क्या बात
1: तो एक करके जो नीचे कूद के ना उस लकड़ी को हाथ लगा रहे उसको तो पकड़ नहीं पाता, वो जो ऊपर रहते उनको पकड़ते थे।
0: तो चलिए, बड़ा ही रोचक सा ये खेल था। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इसको खेलें, उन्हें सिखाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत होती होगी कि स्वास्थ्य भी बनता होगा इसमें, है ना? जी जी। तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी मीठी सी याद भी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक पेड़ माँ के नाम है ना, चाहे धरती माता के नाम या अपनी माता जी के नाम, एक पेड़ लगाने का आह्वान उन्होंने भी किया है देशवासियों से। तो इस बरस आप कौन सा पेड़ लगाएंगे?
1: मैं इस बरस तो आम का पेड़ अभी लगाया हूँ, उनकी गोहियाँ जो है अच्छी प्रकार की गोहियाँ हैं, उनको मैंने अभी लगा दिया हूँ अपने घर के सामने। अब वो जब छोटा पौधा बन जाएंगी तो मैं उनको कहीं व्यवस्थित लगाने का प्रयास करूंगा मैडम।
0: तो आप कुछ लोगों
1: फलदार वृक्ष जीवन में सफलता, फलदार वृक्ष जीव सब लोगों को खाने पीने का मौका भी मिलता है, पेड़ पशु पक्षियों को भी उसमें आवास बनाने की सुविधा मिल जाती है, जीवन में सफलता ही देते हैं मैडम। पेड़ पौधों को काटना या उनको नुकसान पहुँचाना हमारे मानव जीवन को खतरा पैदा करना है।
0: बिल्कुल, तो आपका संदेश लोगों तक पहुंचा सुमत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जसराम जाटव।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सीपी। गांव का नाम जोराई।
0: जोराई से जसराम जाटव जी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे वन
1: हाँ,
0: महोत्सव पर? किस तरह से आपके यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाता है इस सप्ताह में। तो वन महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं और पेड़ों का क्या महत्व है, आप क्या कहेंगे?
1: पेड़ों का मतलब ये है मैडम, क्या पेड़ लगाना चाहिए तो इससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है मैडम, इससे बहुत अच्छा रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: हाँ।
0: आप कौन

0: सा पेड़ लगाएंगे इस बरस?
1: या मैडम इस तरह पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इस तरह पेड़ लगाएंगे तो बरसात आएगी तो अच्छा अच्छे से हो जाएगा ना।
0: हाँ हाँ, ये तो महत्व की बात हो गई। आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं?
1: आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं मैडम।
0: आम का पौधा लगाएंगे और उसको जब लगाएंगे तो उसकी परवरिश भी कीजिएगा और उसको संरक्षण भी दीजिएगा ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके, है ना?
1: हाँ वो तो सही।
0: तो कोई याद है बचपन की पेड़ों से जुड़ी हुई?
1: हाँ मैडम, क्या बचपन की याद है, वो क्या है, हम हमारे दोस्त के साथ में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था, खेलना खेलना कूदना अच्छा लगता था मैडम हमको।
0: तो पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे?
1: हाँ मैडम, जो क्या पहले पेड़ पे जो पेड़ वाला जो खेल नहीं होता है वो खेल को खेलते थे पहले।
0: कौन सा खेल?
1: अरे जो पेड़ पे खेलते है ना, जो लुका छुपी क्या बोलते है,
0: लुका छुपी
1: बोलते,
0: क्या बोलते हैं,
1: वो रगदामन बोलती थी मैडम। तो क्या है, इस पे डंडा, एक एक एक लकड़ी का डंडा लेते थे तो इस पे पेड़ पे छिलका देते थे।
0: हम समझ गए, हमारे एक और श्रोता ने इस खेल का नाम बताया था, लुका छुपी की भी बात कुछ लोग करते हैं इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास इस तरह के खेल हैं जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं और इन खेलों को आप खेलते हैं। आज के बच्चे भी खेलते हैं?
1: हाँ मैडम, क्या बच्चे भी खेलते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, पेड़ पौधों के साथ जब आप रहते हैं तो एक रिश्ता उनसे बनता है आपका, है ना? बचपन की एक याद आपके मन में है कि आप किस तरह पेड़ों के साथ खेलते थे। तो जसराम जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आम का पौधा जरूर लगाइएगा और कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिएगा कि वो भी पौधे लगाएं। तो आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम जी आपका स्वागत। मैं आपका नीम में सोता बोल रहा हूँ जी। जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश कहार जी, आपने हमारा स्वागत किया जबकि स्वागत हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी। हरियाली के बीच में खड़ा हूँ मैम जी मैं आज।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, वन महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है?
1: अच्छा मैम जी, विषय यही है?
0: हाँ जी, विषय यही है, वन महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं, वनों पर, पेड़ों पर।
1: तो मैं थोड़ा सा अपना माहौल, आंखों देखा हाल सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से
0: जी।
1: कि मेरे सामने चांदनी का वृक्ष लगा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा वृक्ष कह सकते हैं नींबू के लगा है,
0: अच्छा।
1: बीही का लगा है जिसमें फल भी फले हैं बीही के, और कम से कम बीही के 10-12 वृक्ष ऐसे हैं जो फले हुए हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: और
0: तो ये बताइए कि वनों का क्या महत्व देखते हैं आप कमलेश जी?
1: देखिए, वनों का महत्व, यदि वन है तो हम है।
0: बिल्कुल,
1: ईमानदारी से बात की जाए, सचमुच में, बिल्कुल हकीकत में, जमीनी स्तर पर बात की जाए
0: जी,
1: वन के माध्यम से हमारा जीवन है। जंगल और जीवन, ये दोनों आवश्यक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यदि जीवन चाहिए तो जंगल जरूरी है। जंगल किसका? कंकीण का नहीं मैम जी, पेड़ पौधों का।
0: पेड़ पौधों का, बिल्कुल। अगर वन है तो ऑक्सीजन है ना, वन है तो मिट्टी का कटाव रुकता है, वन है तो प्राकृतिक जो जीव है, जीव जंतु, उनको भी आवास मिलता है, और हमें भी फल फूल लकड़ी औषधि सब वनों से प्राप्त होता है ना।
1: और वन के माध्यम से मैम जी देखिए, बरसात है वो आकर्षित होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए मैम जी, यही कह रहा था कि पौधे की बात हुई है तो मैं तो मैम जी सबसे ज्यादा पौधे छोटे रूप में पसंद करता हूँ। मैंने कभी बरगद का वृक्ष लगाया था जो कि आज वो पेड़ का रूप आकार ले चुका है, और एक नीम का लगाया था, उसकी नीम की छा में आज वर्तमान में लोग खड़े होते हैं।
0: क्या बात है, आपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण पेड़ लगाए, बरगद और नीम जी।
1: मैम जी, जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना, लोग ये महसूस करते हैं कि काश पेड़ होते, लेकिन जब उस छाए से जब वो दूर चले जाते हैं तो उस पेड़ को काटने की भी सोचते हैं। तो ये दो प्रकार की गतिविधियां आती हैं मनुष्य के मानसिक रूप से।
0: जी जी, तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पेड़ ना कटें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई, कितने व्रत अनुष्ठान पेड़ों से जुड़े होते हैं, कितना खेल पेड़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरह की कोई याद हो अगर आपके मन में बचपन की।
1: देखिए मैम जी, बचपन में पेड़ों के साथ बहुत खेले, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के मैं समझता हूँ जीवन अधूरा है, पहले ही कहा है।
0: जी जी।
1: तो बहुत से वृक्षों पे चढ़ते थे, फल भी तोड़ते थे, गिर भी जाते थे, पुनः फरोसी पर चढ़ते थे।
0: तो
1: उछल कूद पेड़ों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से हुई है, और वर्तमान में मेरे घर में भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं फल फूल के, जिनको मैं स्पर्श करता हूँ, रोज ही कह सकता हूँ उनके चरण पड़ता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: फूल चढ़ाने की बात होती है तो फूल चढ़ाने से पहले मैं फूल वाले जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके सचमुच में पेड़ पड़ता हूँ और स्वीकृति मांगता हूँ कि मैं एक दो फूल तोड़ लूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि जिन औषधियों को जब वैद्य तोड़ने जाते थे औषधियों को, तो पहले वो उस पेड़ की पूजा करते थे, उस पौधे की पूजा करते थे, अनुमति लेते थे और आभार के साथ वो औषधि वो लेते थे अपने दूसरे लोगों के इलाज के लिए। तो हमारी तो संस्कृति ही आभार की रही है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, कि आप अगर एक फूल भी तोड़ते हैं तो आभार के साथ तोड़कर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं।
1: और मैम जी, आभार आपका भी है, बहुत ही अनुकूल वृक्ष विषय रखा है, मेरे अलावा आपने अपनी बात भी रखी है, अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे। आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत। ये

श्रोताओं, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में ये सफर बेहद हरा भरा और खूबसूरत रहा। आपने केवल पेड़ों की चर्चा नहीं की, उनका महत्व ही नहीं बताया, बल्कि उनसे जुड़े अपने जीवन के वो अनमोल रिश्ते भी हमसे साझा किए, जिनकी छाँव में यादें महकती हैं, संस्कार पनपते हैं और भविष्य मुस्कुराता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वो खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। वो बारिश को थामते हैं, पंछियों को घर देते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वन महोत्सव का ये सप्ताह तभी सार्थक होगा जब हमारे आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले सालों में किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी को आश्रय दे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा का उपहार दे। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उससे भी बढ़कर उसे वृक्ष बनने तक अपना स्नेह और संरक्षण देंगे। चलते चलते हमारी यही कामना कि धरती यूं ही हरी भरी रहे, नदियां गुनगुनाती रहें, पंछियों का कलरव यूं ही गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें, चहकती रहें, महकती रहें। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के

0: कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे में बालटल और पहलगाम रूट के यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। आज भोपाल, इंदौर सहित उज्जैन और 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमीर सुदामा, शेख मुनीर और इनके गांव के लोगों ने ये हमें खत लिखा है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने हमें लिख भेजी है भीगी पलकें फिल्म के गाने की फरमाइश, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं भीगी पलकें फिल्म से ये गीत।

भाटरपारा दंतीय गीसे द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार जाविंद्र कुमार वर्मा बंडा बेलई से लक्ष्मण रेकवार विनीता रेकवार वैशाली वैष्णवी अनरत हल्ले ऋषि रेकवार आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी के फरमाइश पर ये नगमा।

आयु सुन रहते हैं आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं साहू नगर से राहुल मनवर सरला विशाल चेतना रोशनी और बेबी प्रियांशी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नगमा जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राशि, रक्षित चित्रंजन, कमल उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, ऋचा स्वीटी, रिया रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। डोंगरगांव से राजपाल गजबीय, राधिका, बेबी अनिष्का और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फना फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। वाइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फना फिल्म से ये नगमा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा।

जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।

0: एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जहाँ बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियाँ भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े ज़बरदस्त हैं। तो तांगे पे सफ़र कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुँचे थे। तो सफ़र करते करते जहाँ उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई, आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके पतिदेव क्या बोलते हैं, परवाह ना करो, नो प्रॉब्लम। एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी, अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है, मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं। एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही, वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लगे बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं उससे ज़्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 से मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए, जबकि उनकी कम से कम 50 थी लेकिन बोलती हैं 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा, वो नीचे कहाँ, वो जो माताएं बहनें बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहाँ से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लड़का फिर पढ़ा, 8 2 6 56, उनके पिताजी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं अचानक उनके घर पहुंचा और मैंने जब वो बच्चे को पढ़ते और उनके पिताजी को तारीफ करते देखा तो मैंने जरा सा सोचा विचार किया, फिर मैंने कहा, भाई साहब आपका बच्चा 8 2 6 56 बोल रहा है जबकि ये गलत है, 8 2 16 होता है, आपको कम से कम अपने बच्चे को समझाना चाहिए, आप तो तारीफ किए जा रहे हो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 2 16 होता है, मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, वो बोल रहा है 8 2 6 56, मैं मानता हूँ कि वो गलत है, उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि कल में और आज में बड़ा फर्क है। मैंने कहा, साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 2 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहाँ आओ भाई यहाँ आओ। लटोरे मेरे पास आया, वो कहता है, नमस्ते बाबूजी, बोलिए। क्यों लटोरे, ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या?
1: नहीं बाबू जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है।
0: अच्छा, किसने बांधी?
1: मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है।
0: क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी?
1: नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं।
0: हमने बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई। तो वो चिट्ठी कहाँ है?
1: वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है। मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहाँ रुकती है।
3: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं। कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकल आती है और उसका गलत अर्थ कैसे निकालते हैं, उसकी कैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, उसका नमूना देखिए। एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो। अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने

का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है हाँ, और क्या फिर? और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है? बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया? कैसे गड़बड़ हो गया? बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई है। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी

0: इतनी खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई है। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी।
1: और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उस

0: निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। जब वो चला जाता है तो एक समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते, अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी दो चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो चार पांच भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया,
1: राजेंद्र खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ।
0: लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
2: है ना, क्रिकेट एकम क्रिकेट, क्रिकेट दुनिया विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अट्ठे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
3: हाँ भेजा, क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंस रहे, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो निबंध लिखो इंग्लिश में, हमारी टोपी पर लिखना है, माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती, भेजा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है।
4: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने, अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
5: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरु जी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये 2 मिनट होगा, चलिए सावधान, सब बच्चे सावधान, आंखें बंद बंद, गुरु जी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था। मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे?
6: नहीं, हम ये तो मौका रहता है कि गुरु जी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
5: मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताएं कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका?
6: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है सर, कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन देखता है।
5: अच्छा बेटा गुड़िया, तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती तो तुम्हें कैसा लगता है?
6: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती हूँ ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना, स्वीट यू।
5: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
6: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख ना जाए दूसरी शादी ना करना।
5: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि
7: देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
5: जी भैया।
7: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना, समझ गया? नहीं समझ गए? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
5: छुट्टू ने क्या कहा, भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
7: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
5: बहुत एक नंबर के आलसी।
7: क्यों क्यों नहीं लगाओ गैया?
5: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया, यार गैया बहुत लात फटकार।
7: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
5: भैया गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुँह पर आता है। गैया लगाने मुँह पर आता है? गैया हाथ से लगाना है कि मुँह से लगाना है? नहीं।

0: लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे तो लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा। आह आह आह आह। दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं, तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये, और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
1: मतलब क्या से लगो तो मतलब, अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए, सो हमने कहूँ चाट में बैठे, कहूँ चाइनीज में, और रसगुल्ला की ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए हमारे, तो हमने पंखों का बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं, वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आए, हम तो खूब घूमे फिरे, खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज बताओ के तुमने दशहरा देखो, हाँ खूब देखो, राक्षस बड़ी बड़ी दुर्गा जी, और यहाँ सो पूरा मतलब सब बढ़िया देखा, अब जी बताओ कि घर कैसे चलो, तो कहीं काम करें कि अपन 407 में चले गए, यहाँ 407 में चले तो कहीं 407 में जी भीड़ जाए, लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें, फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चले, कहीं यहाँ ऑटो रिक्शा वाले 5 के 25 बता रहे, खूब लूट हमारी मचाए हैं, तो फिर काश्चनिक काम करे कि अपन रिक्शा कर लें, कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो, रिक्शा देखो कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा हो। तो अब तुम्हें बताओ मतलब कैसे चले, सालकल में बैठ, नहीं सालकल में कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो, बड़ दिक्कत हो बैठवे में, तो बताओ काश चले, कई एक काम करो, क्या करें, कुत्ता कर ले कान में बैठ के निकल चले।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
3: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है, जिससे बोला गया वो बोलता है, कहले साहब बहुत अच्छा साहब, आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं, वो बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना, तो योजना अधिकारी बोलते हैं आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ, मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी है। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ, तो वो सज्जन बोलते हैं फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम है, हमें लड़के की प्रतीक्षा है। एक होटल में लिखा था आइए खाइए पैसा मत दीजिए, मतलब इसका यह हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब तो मजे वाली बात हो गई, पहुंच गए 2-4 लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है, देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया, बिल में लिखा था 990 रुपये 40

0: अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा, यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपये तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहाँ से देता 500 रुपये। तो जज साहब बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपये स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपये जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
1: बहुत देर हुई, विनय जैन कहाँ है, बड़े खामोश हैं, जरा देखें तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
2: एक विवाह योग्य बालक ने इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई, 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है, और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स, लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है, बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग के डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक जरूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है, और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब समस्या, कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है, समस्या तो मैडम जुधाबाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की, ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफ़ी देर से खेल रहा था, और वो बच्चे को खिलाती हुई महिला और अपने कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चे को पानी पिलाती हुई अपने सफ़र को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चे को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफ़ी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तौहीन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलवाता हूँ ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला ला के देता हूँ।
0: अपनी कहानी अखबार में छपे, इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था, मेहरबानी करके आप जहाँ चाहें उचित समझें, विराम चिन्ह वगैरह लगाकर मेरी कहानी पूरी छापें। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी, लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया, उसमें क्या लिखा, आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें, कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
3: पापा पापा हमारी शादी कब होगी,
0: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। तो लड़का बोलता है,
3: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे।
0: तो लड़के का बाप बोलता, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे। तो लड़का बोलता,
3: क्यों, इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
2: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में

0: में उन्होंने एक आवाज लगाई, सुनो
1: जी अभी आई।
2: ये सूजी में शक्कर कम है।
1: ये सूजी नहीं उपमा है। हाँ
2: हाँ मालूम है, उपमा में नमक ज्यादा है।
0: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई। आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
2: इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है। कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फामलेट सामने से हमारे।
0: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई। पतिदेव को उबले अंडे ज्यादा पसंद थे, जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रकुटी फिर तन गई।
2: तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, है आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई,
0: बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का आमलेट बना के ले आती हैं, तो जैसे ही दोनों प्लेट देखते पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती हैं। पता नहीं तुम्हें कवाकल आएगी, जो उन अंडों को उबालना था उनका आमलेट बना लाई, और जो उनका आमलेट बनाना था उनको उबाल लाई।
3: एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहां देखो वहीं अपना हाथ लेके बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है। पंडित जी बोले, बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है। बेटा यही तो गड़बड़ है, यहाँ से धन आता है यहाँ से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज़ का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पाँव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड टूर करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है? बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
4: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की पहली कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अब भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएफ योजना 2026 को 29 जून से प्रभावी कर दिया। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। 147 गाड़ियों के काफिले में बालटाल रूट के 2312 लोग और पहलगाम रूट के 2510 लोग यात्रा पर हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, तेज धूप, गर्मी, घबराहट से परेशान आप हम सभी अब धीरे धीरे हो रहे मौसम के बदलाव यानी बारिश का आगाज करने को तैयार हैं। ठंडक, ताजगी और सुकून का एहसास कराती बारिश की बूंदें हमारे मन में प्रसन्नता ला रही हैं। बहनों, बारिश की बूंदों से न केवल हम और आप खुश हैं बल्कि प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। नीरस होते पेड़ पौधे सभी जैसे हरे भरे होने को तैयार हैं। बारिश की बूंदें उन पर पड़ते ही नई नई कोपल आ गई हैं। धीमे धीमे चलती हवा जब पेड़ पौधों को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो कि पेड़ पौधे भी खुशी से झूम रहे हैं। आसमान में बादलों का छाना, ठंडी हवा का चलना और पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू मन को बहुत ही शांति देती है और अपने आप ही हम आप तनाव मुक्त होते हैं और प्रसन्नता का एहसास कराती हैं बारिश की बूंदें। लेकिन बहनों, इसके साथ ही हमें बारिश के मौसम में ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। न केवल अपना बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का तो और भी ध्यान रखना होता है। बच्चों को बारिश में भीगना तो पसंद होता ही है, लेकिन ज़्यादा भीगना नुकसानदायक भी हो सकता है। इस मौसम में नमी की अधिकता के कारण जीवाणु कीटाणु भी जल्दी बढ़ते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हमेशा पूरी तरह से सूखे कपड़े ही पहने, गीले कपड़े या जिन कपड़ों में नमी सी लग रही हो तो उन कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा व पका हुआ गर्म भोजन ही करें। स्वच्छ पीने के पानी का विशेष ध्यान रखें और आजकल तो बाज़ार में बहुत तरह के वाटर प्यूरिफायर मिलने लगे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्राचीन तरीके हैं जो हमारी दादी नानी करती आई हैं, यानी पानी उबाल कर पिएं या फिटकरी से साफ़ करके पिएं या छान कर पिएं। इसके अलावा इस मौसम में हमारी पाचन क्रिया थोड़ी धीमी भी हो जाती है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करें। अपने आहार में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें और जहाँ तक हो बाहर के खाने से बचें। मैंने बारिश का मौसम बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें तो बीमारियाँ हमारे पास भी ना आएंगी। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए अपने शरीर को हमेशा साफ और सूखा रखें। लेकिन फिर भी बारिश की शुरुआती रिमझिम फुहारों में भीगने का मन तो करता ही है, तो आइए इस गीत के माध्यम से ही बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वरना जब बारिश होगी तो सेहत की बात तो होगी ही, तो बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम हो या गला खराब हो या कान में पानी चला जाए या दर्द हो, लेकिन इलाज तो सबका है। स्वास्थ्य भेंटवार्ता में आज है जानकारी नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव और उनसे बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने। तो आइए सुनते हैं ये स्वास्थ्य भेंटवार्ता।
1: सेहत की बात कार्यक्रम में अखिल जी आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं के बीच।

0: स्वागतम।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि नाक कान गला में सामान्य रोग किस तरह से क्या क्या होते हैं।
0: ये बदलता हुआ मौसम है
1: जी,
0: तो इस बदलते हुए मौसम में आम तौर पे जुखाम बहुत होता है, और इसलिए हम सबसे पहले नाक से संबंधित या सर्दी जुखाम से संबंधित बीमारियों पे चर्चा कर ले। सर्दी जुखाम का लक्षण हम सबको पता है, नाक का बहना, नाक बंद हो जाना, इसके साथ में थोड़ा बुखार हो सकता है, ये आम लक्षण है
1: जी।
0: ज्यादातर दवा या इलाज नहीं भी करें तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं
1: जी,
0: पर यदि 2-3 दिन हो गए हैं और हमारे को ये कष्ट बने हुए हैं
1: जी,
0: ऐसी स्थिति में हमको एक विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्दी जुखाम के साथ यदि हम कान में दर्द महसूस कर रहे हैं तो हमको बिना देर करे एक नाक कान गला के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि नाक कान और गला आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सर्दी जुखाम का इन्फेक्शन कान तक जाएगा
1: जी,
0: कान में जैसा हमारे नाक से पानी बन रहा है इसी प्रकार से वहां पे पानी बनना शुरू होता है और वो मवाद का रूप ले लेता है। अब बाहर आने के लिए उसको जगह चाहिए
1: जी,
0: कान में सब तरफ हड्डी सपोर्टेड रहती है, कान का पर्दा एकमात्र ऐसी झिल्ली है जो नाजुक होता है और उस मवाद के प्रेशर में आके वो फट सकता है। तो वो एक ऐसा लक्षण है जिसमें हमको बिना देर करे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब एक बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कुछ खाने पीने से सर्दी होती है
0: जी,
1: ये खा लोगे तो सर्दी हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हम लोगों के दिमाग में इतना गहरा बसा हुआ है ये चीज
1: जी,
0: कि हम किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज से लिंक करते हैं या उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। साइंटिफिकली या मेडिकली बात करें
1: जी,
0: तो जो चीजें छूने में ठंडी हैं, जिनका तापमान कम है, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडी बर्फ वाली लस्सी, ऐसा यदि जो चीज छूने में ठंडी है वो हम यदि लेते हैं
1: जी,
0: तो कुछ देर के लिए हमारे गले वाला जो इसके आसपास का हिस्सा जितना उसके संपर्क में आता है
1: जी,
0: उसका रक्त का प्रवाह कम हो जाता है ठंडे से संपर्क में आने के कारण,
1: और उसमें खराश जैसे महसूस हो।
0: एग्जैक्टली, और उतनी देर हमारी समझ लीजिए कि बॉडी में गश्त नहीं हो रही, पुलिस गश्त पे नहीं है और कीटाणु मौका पाके वहां पे अपराध कर सकते हैं
1: जी।
0: तो कुछ हद तक तो ये सच है कि जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी,
0: वो हमको थोड़ा सा सर्दी जुखाम पैदा कर सकती है कि हमको सर्दी जुखाम हो जाए
1: जी।
0: खट्टा खाना मैं नहीं समझता, मेरी जानकारी में, कि बहुत फर्क पड़ता होगा
1: जी,
0: पर खट्टी चीजें ज्यादातर एलर्जी जैसे
1: जी
0: लक्षण पैदा करती हैं
1: जी,
0: तो खट्टा डायरेक्टली मैं बहुत जिम्मेदार नहीं समझता
1: जी,
0: पर हाँ जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी,
0: वो हमको नाक कान गले से संबंधित कष्ट दे सकती है
1: जी,
0: और बदलते हुए मौसम में यदि हम थोड़ा सा परहेज से रह लें तो शायद बेहतर होगा
1: जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो एकदम से कोई सुबह उठा और खुली हवा में थोड़ा ठंडे में और उसको लगातार छींके आ रहे हैं
0: जी,
1: तो उसको जैसे लगता है कि ठंड से उसको एलर्जी है
0: जी,
1: ये क्या है?
0: असल में एलर्जी का ही एक रूप है
1: जी,
0: जैसा मैंने कहा था बदलते मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये मौसम रहता है जिस समय वातावरण में बहुत सारे परागण होते हैं
1: जी,
0: एलर्जन जिसको हम बोलते हैं, ये परागण जो होते हैं परागकण, ये ज्यादातर एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं
1: जी।
0: इस मौसम में वातावरण में बहुत ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है
1: जी,
0: तो जो व्यक्ति साल भर जैसे कोई व्यक्ति नाक की एलर्जी से पीड़ित है
1: जी,
0: साल भर यदि वो कंफर्टेबल रहा है तो इस समय उसको एलर्जी के लक्षण दोबारा हो सकते हैं
1: जी।
0: इसको हम मेडिकल भाषा में सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं
1: जी,
0: कि एलर्जी का वो प्रकार जो किसी एक खास मौसम में अपना असर दिखाता है
1: जी जी,
0: तो हमको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा एक एलर्जी होती है सडन, यदि टेम्परेचर का चेंज होता है कि हम बहुत ठंडे कमरे में थे और हम अचानक बाहर आ जाते हैं
1: जी,
0: तो ये जो तापमान का सडन परिवर्तन है ये भी हमारे को
1: जी,
0: कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमको एलर्जी जैसे लक्षण ये पैदा कर सकता है
1: जी।
0: तो ये सच है कि सुबह उठ के यदि हम अचानक बिस्तर से बाहर निकल आए
1: जी,
0: तो हमको छींकों का दौर शुरू हो सकता है। इसके लिए बचाव का एक ही उपाय है कि जब हम उठ जाएं
1: जी,
0: कुछ समय जागृत अवस्था में बिस्तर पे ही बिताएं। जब हम बिस्तर से बाहर उतर रहे हैं, फर्श पे पैर रख रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि नंगे पैर हम फर्श को ना छुए, ठंडे फर्श, वो कहा जाता है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे हो
1: जी,
0: सामान्य तापमान, या कुनकुना पानी पीना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा
1: जी, अगर ऐसे लक्षण है।
0: हाँ, हम ख्याल से हम सबको ख्याल रखना चाहिए इन सब चीजों का।
1: अक्सर जब ऋतुएं बदलती हैं लोग परेशान हो उठते हैं और कुछ ना कुछ एलर्जी उनको सर्दी खांसी जैसे ही, यही सबसे ज्यादा मतलब हो, तो कभी कभी तो वायरल जैसी भी चीजें हो जाती हैं, ये इसके बारे में बताइए ना।
0: बदलती ऋतुओं में जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं
1: जी,
0: तो कुछ नए कीटाणु को पनपने के लिए मौका मिलता है। तो ये वो कीटाणु हैं
1: जी
0: जो अभी तक वातावरण में नहीं थे
1: जी,
0: और हमारा शरीर जो था
1: जी
0: उन कीटाणुओं के लिए अभ्यस्त था जो पिछले मौसम में थे। नई ऋतु, नए कीटाणु उत्पन्न होंगे और हमारा शरीर हो सकता है उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं। तो बदलती ऋतुओं में डेफिनेटली थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ नए कीटाणु वातावरण में पैर जमाते रहते हैं जो हमको बीमार करते।
1: कुछ लोगों का गला बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है,
0: ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का स्रोत गले में ही होता है। टॉन्सिलाइटिस एक आमतौर पे होने वाला गले का कष्ट है, ज्यादातर लोग इस टर्म से परिचित भी हैं कि हमको तो टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है
1: जी।
0: यदि आपका गला साल भर में 3 बार से अधिक खराब होता है इतना कि हमको दवाई खानी पड़ती है
1: जी,
0: ये एक संकेत है कि हमको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए
1: जी,
0: और हो सकता है हमारे को टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े
1: जी। कुछ लोग जैसे कि कहा कि तेल गरम करके, मैं ऐसे मिथक की बात कर रहा हूं जो जुबानी चलते हैं लोगों के, और ये नुस्खे घरों के नुस्खे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बच्चों को कान में तेल डाल दो?
0: देखिए बहुत पुरानी परंपरा है
1: जी,
0: और मेरी जानकारी उसके बारे में कितनी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीढ़ियों से सदियों से करते आ रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक बेसिस रहा है
1: जी,
0: पर मुझे ऐसा लगता है कि कान में तेल डालना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है
1: जी,
0: शरीर ने खुद ही वहां पे एक वैक्स नामक एक चीज का शरीर खुद ही निर्माण करता है कान के अंदर, जो उसको वहां उतना नमी बना के रखता है या चिकनापन जितनी आवश्यकता है
1: जी।
0: हर चीज में कान में तेल डालना नहीं सही है और नहीं डालना चाहिए मुझे लगता है। क्या कान में दर्द है उसको गंभीरता से लीजिए और डॉक्टर से मिलिए, कान के दर्द को कृपया एक दिन भी नजरअंदाज ना करें।
1: तो क्या ये जो हमारे कान हैं, गला है, इनको साफ सफाई की क्या मतलब, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि यदि जरूरी है तो ही मिलना चाहिए, कुछ लक्षण है तो, नहीं तो पुलिस से, डॉक्टर से और वकील से दूरी रहना चाहिए मेरे ख्याल से, आवश्यकता पड़ने पर इनके पास जाना चाहिए
1: जब लक्षण देखें।
0: लक्षण यदि कष्ट है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, जब कभी कष्ट हो रहा है मतलब वो हमारा ऑटोमेटिक मोड काम नहीं कर रहा है, उस समय शायद हमको।
1: अमूमन ऐसा देखा जाता है, छोटे बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, वो बेचारे अपना कष्ट किसी को नहीं बता पाते हैं, जब वो कभी कान मलते हैं
0: एग्जैक्टली
1: जी, तो उससे क्या,
0: यदि बच्चा कान मल रहा है या कान पकड़ के रो रहा है
1: अच्छा,
0: तो उसको 100% कान में कष्ट है
1: जी।
0: कान में दर्द होने पर ही बच्चा ऐसा करेगा, और छोटे बच्चों में 1 वर्ष से कम बच्चों की शारीरिक रचना ऐसी होती है कि उनको कान के इन्फेक्शन औरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो सकते हैं,
1: ज्यादा हो सकते हैं
0: कान का दर्द। हम फिर वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि कृपया कान के दर्द को गंभीरता से लें। यदि आपका बच्चा कान पकड़ के रो रहा है, कान को बार बार हाथ लगा रहा है, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलिए।
1: बच्चे को दांत निकलते समय अधिक इन्फेक्शन वो कान में और गले में
0: हो जाता है,
1: उस समय के लिए आप क्या कहेंगे?
0: देखिए क्या होता, जब बच्चे के दांत निकलते रहते हैं तो उसको मसूड़े में एक अजीब सा सेंसेशन होता रहता है
1: जी,
0: और मसूड़ों में एक अजीब सी एहसास होने के कारण बच्चा हर चीज मुंह में डालता है और मसूड़ों से
1: जी
0: उसको चबाने की कोशिश करता है। ये एक स्वाभाविक कसरत है जो भगवान ने उसको बनाया हुआ, क्योंकि जितना हम मसूड़ों को इस्तेमाल करेंगे उतना आसानी से हमारे दांत बाहर निकलते हैं
1: जी।
0: तो ये तो उसका अच्छा वाला पार्ट हो गया, खराब वाला पार्ट ये है कि बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है तो इन्फेक्शन जरूर शरीर के अंदर पहुंचेगा। कभी कभी ये उल्टी दस्त की वजह बन जाता है। सर्दी जुखाम को अपन इससे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, पर हाँ हमको कोशिश करना चाहिए कि यदि छोटा बच्चा घर में है तो साफ सफाई इतनी होनी चाहिए, गंदी चीजें बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए आसानी से, क्योंकि उस समय बच्चा जो भी उसके हाथ में आएगा उसको मसूड़ों में दबाएगा ही दबाएगा।
1: क्या योग से, प्राणायाम वगैरह से भी ये नाक कान गले में?
0: 100% योग हमारे शरीर की हर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है
1: जी,
0: जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस
1: जी।
0: योग जो भी व्यक्ति उचित तरीके से कर रहा है
1: जी,
0: उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ज्यादा अच्छी होगी उस व्यक्ति की अपेक्षा जो योग नहीं करता है
1: जी।
0: तो योग भगाए रोग एक आम तौर पे बोली जाने वाली चीज है, और ये 100% सही।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए और आपने महत्वपूर्ण 3 अंगों के बारे में नाक कान और गला के बारे में सामान्य रोगों की जानकारी दी। निस्संदेह इससे लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी सेहत की बात में बहनें सुन रही थीं नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से डॉक्टर बैजनाथ गौतम की बातचीत। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद बारिश के साथ हल्की हल्की ठंडक के साथ अब सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे भी तैयार हैं स्कूल जाने को, तो हम आप उनको यही बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ खेल मस्ती, अब रोज जाओ स्कूल और मन लगाकर करो पढ़ाई। लेकिन अब स्कूलों में केवल कॉपी किताबों के साथ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए स्कूलों में मैदान में खेलने के साधन भी होते हैं, साथ ही खेल प्रशिक्षण के लिए टीचर भी होते हैं जो बच्चों की क्षमता अनुसार खेल का प्रशिक्षण देते हैं। और आज बहुत से लोग अलग अलग खेलों में अपना कैरियर बना रहे हैं। खेल से संबंधित कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें आगे चलकर कैरियर बनाया जा सकता है। आजकल तो हर समय प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चलते रहते हैं और उसके

और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है। खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज का दिन यानी 2 जुलाई दुनिया भर के खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों और उनके काम के प्रति समर्पण को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 2 जुलाई खेल पत्रकार दिवस के लिए इसलिए चुनी गई क्योंकि 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के खेल पत्रकारों को एक मंच पर लाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और खेल पत्रकारिता में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देना है। खेल पत्रकार न केवल खेलों की जानकारी, विश्लेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं, बल्कि खेलों के बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। खेल से खेल भावना विकसित होती है, आपस में मित्रता बढ़ती है, एकता की भावना आती है। और आइए बहनों, चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव पुण्य कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव पुण्य कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन समय एक बार पुनः सुन लीजिए, 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे फोन नंबर 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: अरे वाह श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत गजल कहानियां और ढेर सारी यादें, हर जनरेशन की धड़कन।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत।

नीलम कुलकर्णी की गाई इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मानस रॉय चौधरी के गाए भजन और गीत।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहब भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। EPFO जल्द ही UPI और WhatsApp के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और BSF परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत UN वीमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए

0: चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत

थे आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कबाई सालपुरा जिला बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने इन सब ने सुनना चाहा है सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोंसले और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने।

आशा भोंसले की आवाज़ में सुनिए समाधि फिल्म का ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर.डी. वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, लल्लू ऋषि रेखवार, कंवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आप सबने सुनना चाहा है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ में शोर फिल्म का ये गीत, बोल राजकपि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राजे, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

विक्टोरिया नंबर 203। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का गाना सुनिए। वर्मा मलिक का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

पिया का खैर कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतला राजेश, घंटाघर छुक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन सम

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। 6:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंट वार्ता, विषय है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 10:10 और 9:30 फिल्म संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम रात 10:30 से आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच

0: इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
2: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है, भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
2: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था, ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं ना, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
2: जी रहे हैं
1: और वो वक्त, उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं और आनंद का जो आपस
2: क्षण
1: में
2: होता है
1: क्षण होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सोनाली,
2: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
2: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नज़रिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ ज़िंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
1: बिल्कुल,
2: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
2: और आप क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए,
2: तो सुनते हैं गीत।
3: चोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती है
0: जी,
1: जी।
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
1: जी
0: सम्मानित कर दिया गया
1: बिल्कुल।
0: उन्हें। जी
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाज़त भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
0: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें

0: भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
1: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
0: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
1: बिल्कुल। और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई,
0: जी
1: ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
0: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
1: गीत सुनेंगे,
0: तो एक गाना सुनते हैं।
1: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: तो फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
2: हमारा
1: मजाक
2: चेहरा
1: में
2: वैसा
1: बोलते
2: ही
1: हैं
2: हो जाए।
1: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
2: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
1: हाँ
2: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
1: हाँ
2: फोटोज,
1: बिल्कुल,
2: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
2: और
1: सारी
2: कुछ
1: जी।
2: तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
2: जी।
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
2: और फिर
1: जाता है, और
2: उस
1: फिर वो बातें
2: वक्त,
1: पता नहीं कहाँ
2: हाँ,
1: तक चली
2: और
1: जाती
2: उस
1: हैं।
2: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है, तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल।
2: सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
2: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था, तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं।
2: एक साथी कहते हैं कि भाई, मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना, फॉर्म में लगाने वाली पास पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था, अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
2: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है
1: एहसास
0: वैसे।
1: तो वही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं, उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है, जहाँ पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना
1: ये
0: मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो
1: बिल्कुल।
0: हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और सब कुछ सोच के, घर परिवार देख के, पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के, पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था,
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल।
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए, और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल,
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े, और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन,
0: बटाए।
1: हाँ
0: यानी
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस से कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब

0: माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए लें। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं, तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती, तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहाँ चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
0: बिल्कुल
1: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था। लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज़्यादा बड़ों में होनी चाहिए, ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
0: बिल्कुल
1: करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: ज़रूरी है।
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियाँ, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले
0: ले
1: सकती है,
0: सकती है,
1: अपनी
0: पा
1: इच्छा पूरी
0: सकती
1: कर
0: है, अपनी
1: सकती,
0: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
1: हाँ
0: कर
1: पूरी
0: लेती
1: कर
0: है,
1: सकती है।
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
1: पूरे परिवार
0: परिवार को
1: को।
0: होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए, तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
0: बिल्कुल
1: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती, बहुत बार
1: अक्सर
0: ऐसा
1: ऐसा
0: होता
1: होता तो
0: है ना।
1: है ना।
0: हाँ, पर
1: और ये
0: नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: वो
1: बारे में सोचते
0: सोच
1: हैं
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों
1: ना।
0: बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोना है

0: ना सोएंगे तो
1: हम्म,
0: अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर
1: खाना
0: आप चिड़चिड़े होंगे, या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
1: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा

0: पति देव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है
1: है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में, और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत जरूरी है
0: हम
1: क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेच कर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते
1: बिल्कुल, और
0: हैं।
1: अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर
0: रहना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले न, सोने से
1: बिल्कुल
0: पहले
1: बिल्कुल
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम दे।
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले।
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के निमित्त श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी, सर,
0: सुनते
1: जी, सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, गैंग पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सुनता हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश,
0: जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त है, रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म का के? अच्छा
1: जी सर, नूतन सुनिधि सर फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी। बस
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी, एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ,
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सैगल
1: अब तो
0: साहब।
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और के एल सहगल साहब ने गाया है, और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर। क्या
0: जी
1: सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता है आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत
0: नमस्कार।
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का
0: अच्छा,
1: मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विद भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल जी,
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे? अच्छा
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें
0: ओके।
1: हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी
0: हाँ
1: सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है, जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे हैं
1: सर,
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर। जी,
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना
0: अच्छा,
1: जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। मेरी
0: बोलिए राकेश जी।
1: बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते
0: अच्छा।
1: हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और
0: हाँ।
1: अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तो निकली आ जाएगी।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों के
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंचते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं
0: अच्छा, आपके बाग
1: तो
0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते
0: जल्दी
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: मैं
0: के
1: कहना
0: जी
1: चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी है
0: बिल्कुल।
1: और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी।
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहते।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना? कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल, खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी।
1: काठिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। बढ़िया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहां पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा तो एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, उनसे मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एन आजर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए तो

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तुत है आकाशवाणी भोपाल से न्यूज़ हेडलाइंस में इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता
1: और मैं हूं मेघा। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत शाम को और भी मजेदार, खुशनुमा और यादगार बनाने के लिए,
0: क्योंकि हम लेकर आए हैं ढेर सारी नई दिलचस्प और मजेदार बातें सिर्फ आपके लिए।
1: तो क्यों ना इसकी शुरुआत करते हैं आपसे आज के दो प्रश्न पूछकर। तो पहला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
0: और आज का दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली इनोवेशन सिटी किस शहर के पास विकसित करने का प्रस्ताव है? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर तो हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए आप भी इनके उत्तर खोजिए और बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में।
1: और अब सुनिए इस शाम के पहले गीत को, जिसे फिल्म टू स्टेट से लिया गया है और गाया है आकृति कक्कर शाहिद माल्या ने।

0: मैदान में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, इतिहास रचते हैं, लेकिन उनकी हर जीत, हर संघर्ष और हर कहानी को दुनिया तक पहुंचाने वाला कौन होता है?
1: जी हाँ, वो होते हैं खेल पत्रकार, जो खेल जगत की हर धड़कन को शब्दों और आवाज के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं।
0: अंकिता, खेल पत्रकारिता का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: बिल्कुल मेघा, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस उन पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचाते हैं। वे केवल मैच का परिणाम नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और लगन को बताते हैं।
0: अंकिता, खेलों के प्रति लोगों का उत्साह तो हमेशा से रहा है, लेकिन खेल पत्रकारिता ने इस उत्साह को और बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल मेघा, खेल पत्रकार ही वे लोग हैं जो मैदान में होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना को दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। उनकी वजह से हम खिलाड़ियों की उपलब्धियों, संघर्षों और रिकॉर्ड्स के बारे में जान पाते हैं।
0: तो आइए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम उन सभी खेल पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हैं जो खेलों की हर धड़कन को हम तक पहुंचाते हैं और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाते हैं।
1: दोस्तों, इन्हीं प्रेरणादायक भावनाओं के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जुग जुग जियो फिल्म से कविता सेठ और कनिष्क सेठ की आवाज में।

0: दोस्तों आइए आप सुनते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल, इनसे बातचीत की है रविंद्र दुबे ने।
1: श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रानी दुर्गावती, प्रबंधन संकाय के पूर्व अधिष्ठाता और अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं निजी महाविद्यालय के MBA विभाग के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल जी को। शुक्ल जी से आज हम बात करेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज की आवश्यकता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या है।
2: व्यावसायिक पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो किसी विशेष व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या सेवा में कार्य करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान या कौशल प्रदान करने का एक माध्यम। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे पाठ्यक्रम आ सकते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम IT बोलते हैं, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर, कृषि से संबंधित, उसके व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य से संबंधित, पैरामेडिकल सेवाएँ, होटल से संबंधित पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग
1: जी,
2: और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम है जो इसके अंतर्गत आते हैं।
1: व्यावसायिक शिक्षा के मायने क्या है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को आप।
2: व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य वह शिक्षा है जो व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ
1: जी
2: स्वरोजगार का माध्यम बनाती है।
1: अच्छा जी, डॉक्टर साहब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा क्यों आवश्यक है?
2: वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, औद्योगिकरण का युग है, और इस वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के युग में केवल पारंपरिक एवं सैद्धांतिक शिक्षा आज के रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है।
1: अच्छा,
2: इस स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को व्यवहारिक कौशल, तकनीकी दक्षता एवं रोजगार उन्मुख ज्ञान प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देती है।
1: इसके मूल उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमारे युवाओं को बताएं आप।
2: व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें तथा व्यक्ति अपनी निजी आजीविका कमाने योग्य बन सके।
1: डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को कि व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए व्यापक ज्ञान प्रदान करना है। इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास और इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। यह शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक और तकनीकी कौशल विकसित करना है, ताकि व्यक्ति रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके। यह शिक्षा कौशल और रोजगार केंद्रित होती है।
1: ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्थान रहा है?
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ना और विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना है।
1: जी,
2: इस नीति में इस वर्ष तक लगभग 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जी,
2: इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, ताकि विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी ना बने बल्कि कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार नागरिक बन सकें।
1: जी, आज के डिजिटल युग में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्यों बढ़ा है, ये भी बताएं।
2: डिजिटल युग में नई तकनीक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डेटा मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की आवश्यकता बढ़ी है।
1: अच्छा,
2: इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। कंपनियों को सैद्धांतिक ज्ञान की ही नहीं बल्कि कार्यकुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा कम समय में रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करती है और बदलते परिवेश के अनुरूप हमें तैयार करती है।
1: व्यावसायिक शिक्षा से उद्यमिता को डॉक्टर साहब कैसे बढ़ावा मिलता है?
2: हाँ, यह शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष क्षेत्र में तकनीकी और व्यवहारिक दक्षता प्रदान करती है, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। साथ ही साथ नौकरी खोजने की बजाय नौकरी के सृजन करने के लिए भी यह शिक्षा प्रेरित करती है।
1: अच्छा।
2: इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी नई तकनीकों और विचारों का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं। इस शिक्षा से व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ करता है, और यह शिक्षा व्यक्तियों में आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करके एक सफल उद्यमी बनने व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाता
1: है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका डॉक्टर साहब क्या हो सकती है?
2: ये प्रश्न भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित है।
1: जी,
2: यह शिक्षा केवल रोजगार स्वरोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार भी है।
1: अच्छा।
2: यह विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान, कौशल एवं कार्य अनुभव प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाती है। विद्यार्थी सामाजिक रूप से जिम्मेदार व जागरूक होता है। जब विद्यार्थी अपने कौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है तो उसमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। व्यवहारिक ज्ञान से वह अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल कर पाता है। इसके अंतर्गत वह प्रोजेक्ट कार्य करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है और ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज़ के जरिए वो लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजरियल स्किल विकसित करता है। इस प्रकार के गुणों के विकास से विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास होता है।
1: अच्छा जी, आपने साइबर की बात की, तो ये जो साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम करने में विद्यार्थियों को क्या फायदा होता है, ये भी बताएं।
2: जी, आजकल ये साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम बहुत ही पॉपुलर पाठ्यक्रम है। आज के डिजिटल युग में
1: जी
2: साइबर सुरक्षा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है।
1: अच्छा।
2: इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल सेवाओं के बढ़ते प्रयोग से
1: अच्छा
2: साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
1: जी।
2: इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में डिजिटल सुरक्षा, तकनीकी दक्षता, रोजगार के अवसर, उद्यमिता की संभावनाएं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान की क्षमता प्रदान करना है।
1: अच्छा, व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को डॉक्टर साहब क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी बताएं आप।
2: व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख ज्ञान व कौशल प्रदान करती है। इससे वह जीवन और अपने करियर की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।
1: जी।
2: इसमें रोजगार के बेहतर अवसर, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह केवल नौकरी पाने के योग्य का योग नहीं है।
1: हाँ हाँ।
2: बल्कि जीवन में सफल, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है।
1: इंटर्नशिप का इसमें क्या महत्व हो सकता है?
2: इंटर्नशिप का यदि मैं देखूं तो इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थी एक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है।
1: हाँ हाँ।
2: वो उस स्थान पर जाके अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वहाँ पे व्यावहारिक रूप में प्रयोग करता है, जिसमें उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
1: हाँ हाँ।
2: और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है।
1: अच्छा जी, डॉक्टर साहब ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा कैसे लाभप्रद है?
2: ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यह शिक्षा ग्रामीण विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उनको निरंतर आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, कंप्यूटर, अन्य तकनीकी क्षेत्र संबंधित ज्ञान व कौशल प्रदान करके इनको रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे हमारा ग्रामीण विकास तीव्र गति से आगे होता है।
1: जी, अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, इससे विद्यार्थियों को कैसे लाभ प्राप्त होता है, ये भी बताएं।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है।
1: जी।
2: इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति, कौशल विकास, शोध, नवाचार और करियर निर्माण का एक सशक्त माध्यम है।
1: जी।
2: इसका सही और नैतिक प्रयोग विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सक्षम बनाता है।
1: चर्चा के अंत में और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं से?
2: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के प्रतियोगी और तकनीकी युग में व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवल विकल्प नहीं है
1: जी,
2: बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं
1: जी।
2: मैं युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास, रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं ये पाठ्यक्रम। यदि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। युवा शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है और व्यावसायिक शिक्षा उस शक्ति को सही दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है।
1: व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज की आवश्यकता, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल, इनसे बातचीत की थी रविंद्र दुबे ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, यारिया 2 फिल्म से विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाज में।

0: अंकिता, लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना, जब हमें समझने, हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे फैमिली, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा, हमारे सपने पूरा करने में हमारे अपनों का ही तो हाथ होता है। और इतना ही नहीं, अगर लक्ष्य क्लियर और दूसरों की भलाई से संबंधित हो तो इसे पूरा करने में सहायता हमारे देश की सरकार भी करती है।
0: हाँ, आज के युवा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्री पोस्ट मैट्रिक, नई मंजिल, नया सवेरा और जन विकास जैसे कार्यक्रमों की मदद से लोगों के जीवन को और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: और दोस्तों, सरकार के ऐसे कई प्रयास अल्पसंख्यक वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर भी किए जा रहे हैं।
0: जिससे युवा वर्ग में समानता की भावना जागृत करने में भी मदद मिल रही है। आज हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति एक समान है और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसमें सभी को अपने जीवन के लिए समान अधिकार प्राप्त है।
1: दोस्तों, उम्मीद है आप सभी इन योजनाओं से, सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ने का और दूसरों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, फिल्म फैंटम से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, और अब वक्त है उन सवालों के जवाब जानने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे। तो हमारा पहला प्रश्न था, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही जवाब है 9 मई 2015 को।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र की पहली इनोवेशन सिटी किस शहर के पास विकसित करने का प्रस्ताव है? इसका उत्तर है मुंबई सिटी। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
0: और मैं हूँ मेघा।
1: फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए विषय के साथ। तब तक के लिए
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

0: अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए कुमार सानू को फिल्म क्रिमिनल में, बोल इंदिवर के संगीत एम एम क्रीम का।

रविंद्र जैन की बनाई धुन पर उन्हीं का लिखा गीत आइए सुनते हैं। नदिया के पार फिल्म के इस मधुर गीत को आवाज़ दी है सुरेश वाडकर और हेमलता ने।

आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म के लिए जावेद अख्तर खले का गीत आइए सुनते हैं। संगीत राहुल देवर्मन का है, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की।

ये थे शैलेंद्र सिंह और कंचन, फिल्म थी रफू चक्कर। बोल गुलशन बावरा के थे संगीत कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मनहर उदास के स्वर में अभिमान फिल्म का ये गीत, बोल मजरू के संगीत एस डी बर्मन का।

अभिमान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं हम आपको बता दें। शाम 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत हर रोज की तरह सुना जा सकता है शाम 6:30 पर और सुगम संगीत शाम 6:45 पर। आज शाम 7:21 पर कृषिगत कार्यक्रम आधारित होगा बसदेवा पर।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित सुर्खियों में कार्यक्रम रात्रि 8 बजे 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि 9:30 पर हंसना मना है धारावाहिक की 7वीं कड़ी आप सुन सकेंगे, आलेख हेमंत कुलकर्णी का। आकाशवाणी दिल्ली से क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाया जाएगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये तो थे हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब जानकारी हमारे केंद्र से कल शुक्रवार को प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हमारी पहली सभा में प्रातः 6:05 पर आप सुनते हैं वंदना कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं। श्री रामचरितमानस गान 6:35 पर। कृषि सामयिकी में समसामयिक सुझाव प्रसारित किए जाते हैं सुबह 6:45 पर। गुड मॉर्निंग जबलपुर 7:20 पर। 8:30 पर फिल्म संगीत। लोक रसधार कार्यक्रम में कल सुबह 9 बजे

सुनिएगा सारिका नायक के स्वर में कुछ बुंदेली लोकगीत। गांधी चर्चा का प्रसारण समय 9:15। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी भोपाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस में इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
6: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
3: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
7: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
8: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
9: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
8: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
5: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
9: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
5: क्यों दे दो?
9: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
5: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
9: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
4: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
10: महाराज की जय हो।
11: महाराज की जय हो।
12: महाराज की जय हो।
4: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
13: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
8: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे। मुझे न्याय चाहिए।
13: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
13: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
5: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
8: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
5: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
13: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
13: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
14: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
15: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास नहीं जा रहा
7: है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ। आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
5: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
13: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
11: महाराज की जय हो,
12: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए

0: आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
11: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
6: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
9: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
7: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
6: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
8: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
9: जी सर।
8: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
6: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
7: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
8: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
6: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
8: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
7: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
8: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
12: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं रुद्रदत्त दुबे के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। पहले इनसे सुनिए ये पारंपरिक दादरा।

आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं रुद्रदत्त तुपे के गायक कुछ बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। वक्त है सुगम संगीत का। कलाकार हैं अमित दुबे। लीजिए सुनिए इनके स्वर में चंद गजलें। पहले सुनिए मुमताज राशिद का लिखा ये कलाम।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने अमित दुबे की गाई चंद गजलें सुनी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7 बजे अब हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी

0: इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कलिरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभन मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीराम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीराम जी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ. साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बाहुल्य गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसपे पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें

और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बीएसएफ परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मरसकोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 184,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: Akar.
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल लालवानी, पीडियाट्रिशियन जबलपुर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: इस मौसम में यह बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मानसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, इस तरह की बातों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हम जानते हैं कि ये जो सर्दी, खांसी, इस तरह के की जो तकलीफें हैं, ये वायरस जनित रोग कहलाते हैं। मतलब कि हवा में जो वायरस का फैलाव, संक्रमण, उसके द्वारा ये इस तरीके की चीजें होती हैं। गीले और थोड़ा जो नमी वाला मौसम है और इस समय वायरस का जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखी जाती है।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: हम बस देवा आ गए रे की अरे मोरे राम, सब रे भैया बिन्नु हरो खो के अरे मोरे राम, जानकी भौजी की राम राम के अरे मोरे राम। हम बस देवा पहुँचे गाँव की अरे मोरे राम, हम सोई पहुँचे नीम तरह के अरे मोरे राम, उते बैठे ते सवरे गाँव के अरे मोरे राम, दाऊ कक्का और बड़े दा के अरे मोरे राम, उते हो रही थी चर्चा देश की के अरे मोरे राम, को कहे दे सांगे बढ़ रो के अरे मोरे राम, को कहे के हाल बिकट है के अरे मोरे राम, बरन बरन को हो बे बतकाओ के अरे मोरे राम, इनमें स्याने हते बड़े दा के अरे मोरे राम, उनने बिनती सबसे करी के अरे मोरे राम, आज सुनो एक बात पते की के अरे मोरे राम, झगड़ा झांसे युद्ध लड़ाई के अरे मोरे राम, इनसे बढ़ती जा बे खाई के अरे मोरे राम, इनसे हो बे जन धन की हानि के अरे मोरे राम, आज भाओ तो शिमला समझो तो के अरे मोरे राम, पाकिस्तान और भारत के बीच के अरे मोरे राम, जी को उद्देश्य जोई हतो के अरे मोरे राम, दोई देश मत भेद मिटा के अरे मोरे राम, हर सुर जो तो मिल के करें के अरे मोरे राम, शांति और सहयोग के संग के अरे मोरे राम, बातचीत और भाईचारे से के अरे मोरे राम, बड़े फायदे को जो हतो के अरे मोरे राम, धरती हो वे चाहे आकाश के अरे मोरे राम, एक दूसरे को हम भैया के अरे मोरे राम, मिलजुल कर है सम्मान के अरे मोरे राम, शिमला समझौते की शर्त है के अरे मोरे राम, अपनी अपनी हम हद में रहें के अरे मोरे राम, और हाल देख लो सब रे भैया के अरे मोरे राम, मौसम और करिया बदरों को के अरे मोरे राम, घिर आई घटा घन घोरे के अरे मोरे राम, एक एक बूंद हो तरस गए ते के अरे मोरे राम, अब एक एक बूंद को सब सुख ले लो के अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम के अरे मोरे राम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो भज्जा बिन्नूहर जोमदा सो बरसा गीत सुनाओ तो अपने राम सेवक श्रीवास्तव भज्जा ने। और भज्जा रो आज अपनी मुदेली कविता पाठ में किसानों और जवानों की देश के और भारत माता के प्रति उनको प्रेम और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से देश के विकास में उनके सहयोग की चर्चा कर रही हैं श्रीमती नीलम अवस्थी जी। सुनत हैं उनसे आज जो बुंदेली कविता पाठ।
4: हमारी कविता को नाम है माटी को कर्जा। किसान जो देश को पालनहारो है ओके ऊपर जा कविता हमने लिखी है, लीजिए आप भी सुने। माटी को कर्जा किसान तोपे है, जे हे तुम्हें पटाने हैं, भारत माता रास्ता जो है और ने अब बिसराने हैं, और ने अब बिसराने हैं। पहला उसे खेती बारी में तेने नाम कमाओ, आज दशा काय बिगड़ी भैया, समझ परे ने आओ, समझ परे ने आओ। गफलत छोड़ काम पे अड़ जा, अच्छो अवसर आओ, अच्छो अवसर आओ। नई योजनाएं सरकारी जिनमें लाभ बढ़ाओ, जिनमें लाभ बढ़ाओ। आगे बढ़ बहती गंगा में डुबकी तुहे लगाने हैं, भारत माता रास्ता जो है और ने अब बिसराने हैं, और ने अब बिसराने हैं। पहलू भी ये धरती पे रहे अनेकों राजा वीर, तोरे ही बल पर उनकी चमकी थी रन में शमशीर। जब ढीली पर गई तोरी बाहें, जब ढीली पर गई तोरी बाहें, सो फूटी सबकी तकदीर, सब भूकन मरवे को ठाड़े, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। तवई देश ने तोरी सच्चाई को पहचाना है, भारत माता रास्ता जो है और ने अब बिसराना है, और ने अब बिसराना है। तोरी लगन और मेहनत से राज सिंहासन चलते थे, देख सिधाई और गरीबी बिचौलिए भी छलते थे, देख सिधाई और गरीबी बिचौलिए भी छलते थे। बरखा ठंड और गर्मी में जब तोरे अंग देखते थे, पैदावार बढ़ाने पर भी तुम सदा हाथ मलते थे। तोरी भूलों ने ही तो है शुरू किया ललवाना, भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। जन्म मरण के मौकों में या मोड़ा मोड़ी की शादी में, दिनन दिनन में कर्जा बाढ़े जा पहुँचे बर्बादी में। हड़पी तोरी जर जमीन कर बातें सीधी शादी में, ऐसा ही बने गुलाम देखतई भैया एक बड़ी आबादी में। लूटा था जिन साहूकारों ने उनसे आज बचाना है। भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। किसान अगर ठान ले तो कहा नहीं कर सके, एक बात जरा ध्यान दियो। हे कर्मवीर हे दानवीर इस धरती में अतुल धीर, सरग लोक से आयाते हर ने सब जन की विषम पीर। गमछा मिर्जई और लंगोटी मैं से मिटो तो रो शरीर, हारी धूप सीत और बरखा जब देखो जर्जर शरीर। तेने कहूं न लेखो राखो क्या खोना क्या पाना है, भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। तोरी मेहनत करे तरक्की जुग विकास की डोर से नई खोजों की थाम पधैया, डटना नन्हे बोर से। खुशियां तो एक कदम आएंगी, दिन भर की झकझोर से छलकेगी खुशहाली ठंडक तोरे पूर पूर से। हे धरती के पालनहारे, हे धरती के पालनहारे, अब यही मंत्र अपनाना है, भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। आजकल के वैज्ञानिक युग में अभी किसान की मेहनत कम नहीं भई है, बड़ी फैक्ट्रियां और मंडियां तोरे कर्तव्य की हो आभारी, बड़ी फैक्ट्रियां और मंडियां तोरे कर्तव्य की हो आभारी। उद्यम फूले फले देश में, उद्यम फूले फले देश में, घटी की ना हो लाचारी, घटी की ना हो लाचारी। हे धरती पर सरग लावे की, ये धरती पर सरग लावे की, तोरी है जिम्मेदारी, तोरी है जिम्मेदारी। जनमन ऋणी बनेगा फिर से, जनमन ऋणी बनेगा फिर से, तेरी हो बलिहारी, तेरी हो बलिहारी। भूल न जाना इस बदले युग में, भूल न जाना इस बदले युग में, नई तकनीक चलाना है, भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। भारत को मंतव्य एक है, भारत को मंतव्य एक है, हर किसान खुशहाल बने, मोड़ा मोड़ी करें तरक्की और देश की ढाल बने, और देश की ढाल बने। प्रजातंत्र के ये स्वराज में, प्रजातंत्र के ये स्वराज में बस इतनी ही चाल बने, बस इतनी ही चाल बने, जिससे तोरी कीमत बढ़ जा, जिससे तोरी कीमत बढ़ जा, और न तू कंगाल बने, और न तू कंगाल बने। रे त्याग तपस्या के मतवारे, रे त्याग तपस्या की मतवारे, राम

राज तो हिलाना है, भारत माता रास्ता जो है और न अब बिसराना है, और न अब बिसराना है। हमारी दूसरी कविता को शीर्षक है नौजवान। नौजवान खुद की ताकत से मत बन जा अनजान, नौजवान खुद की ताकत से मत बन जा अनजान, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। ते अब छोड़ कदम की छाया, जामे अब तक रहा लुभाया, पोती पढ़ जाए आगे बढ़ जा, मिटे सभी अज्ञान, मिटे सभी अज्ञान। मनसा पूरन होवे, मनसा पूरन होवे, जैसे बढ़े देश को मान, बढ़े देश को मान। सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। बंसी ऐसी फूंक चैन की, बंसी ऐसी फूंक चैन की, जैसे निकले बस एक राग, जैसे निकले बस एक राग। हिल मिल रहे देश के वासी, ई दीवारी या हो फाग, ई दीवारी या हो फाग। नौजवान खुद की ताकत से मत बन जा अनजान, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़ाओ मान। तोरी श्रम की गंगा ऐसी, तोरी श्रम की गंगा ऐसी, सभी करें स्नान, बंजर धरती भी मुस्काए, तोरी शक्ति महान, तोरी शक्ति महान। करने चाहे तू कदम बढ़ाए तो होवे कल्याण, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। है तेई बल को सागर अद्भुत गाथाएं तोरी, है तेई बल को सागर अद्भुत गाथाएं तोरी। सूरज चंदा माने कहना, करे नहीं बरजोरी, करे नहीं बरजोरी। धरती बापा ताल जोड़कर, धरती बापा ताल जोड़कर, कर सब खे हैरान, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़ाओ मान, तुम्हें बढ़ाओ मान। तय बंसज राणा प्रताप को जीने इतिहास गढ़ो है, तय बंसज राणा प्रताप को जीने इतिहास गढ़ो है। वीर शिवाजी झांसी की रानी का तुमने नहीं पढ़ो है, का तुमने नहीं पढ़ो है। दुश्मन के ते पैर उखाड़े, दुश्मन के ते पैर उखाड़े, कर दे तू हैरान, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। तेरी वाणी की गर्जना सुन दुश्मन रन से भागा था, तेरी वाणी की गर्जना सुन दुश्मन रन से भागा था। 52 घाव सहे छाती पे ऐसा राना सांगा था, ऐसा राना सांगा था। माँ की कोख उजागर करवे, माँ की कोख उजागर करवे, अपने मन में ठान, अपने मन में ठान। सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। ते पथरीली राहों को समतल कर सकता है, ऊसर भूमि में फसल उगाने गंगा भी ला सकता है, ऊसर भूमि में फसल उगाने गंगा भी ला सकता है। झंडा गाड़ सफलता का सभी करें गुणगान, सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो शान, तुम्हें बढ़े हो मान। नई नई खोजों से तोरी भूख गरीबी दूर भगे, नई नई खोजों से तोरी भूख गरीबी दूर भगे। ऐसा मंत्र चला दुनिया में हो अचूक भरपूर लगे, तुम्हें हमारो एक भरोसो तुम्हें हमारी शान। सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। हरे भरे खेतों में धान्य बढ़े खुशहाली आए, कल कारखानों के पहिया कभू न थमने पाए, कभू न थमने पाए। तब तोरी जयकार होएगी, तब तोरी जयकार होएगी, हर सहत अभिमान। सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो शान, तुम्हें बढ़े हो मान। युवा का नहीं कर सके, ये बात पे ध्यान दियो। जंगल और जलाशय बाढ़े तोरी ही तदवीर से, जंगल और जलाशय बाढ़े तोरी ही तदवीर से। फोड़ पाताल गंगे आएगी तोरे श्रम के तीर से, फोड़ पाताल गंगे आएगी तोरे श्रम के तीर से। कहाँ अचूक बाण ने मारे तोरो तीर कमान, सिगरो देश गर्व से कह रहो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। गांधी नेहरू सुभाष की तुमसे थी बस आशा, भारत का बच्चा बच्चा समझे यह शौर्य भरी परिभाषा, यह शौर्य भरी परिभाषा। नदियों की धाराएं कहती, नदियों की धाराएं कहती, दीन अनाथों का हित करवे, सागर भी हुंकार रहे हैं रिपु की जल समाधि देवे। जननी जन्म भूमि के लाने, जननी जन्म भूमि के लाने, हो जाओ बलिदान, सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो शान, तुम्हें बढ़े हो मान।
बट पीपल की गहरी

0: बट पीपल की गहरी छाया में पंछी बिलमाएं, कहीं किसान नीम के नीचे गक्कड़ भरता खाएं। चले मशीने तेज हवासी ऐसा चक्र रहे गतिमान, सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो मान। नई नई खोजों से विकास हो जन जन की अभिलाषा, सोने की चिड़िया कहलावे घटे न तोला मासा, घटे न तोला मासा। तोरी आरती साजे ठाणे क्या निर्धन क्या धनवान, सिगरो देश गर्व से कह रहे हो तुम्हें बढ़े हो मान, तुम्हें बढ़े हो शान।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो भज्जा भी नुहारो, आज है गुरुवार बसदेवा, और आज होते आखिरी काम अपनो किस्सा सुनवे को ठीक है। तो अब हम सुनाओ थे आप और उन्होंने किस्सा, और सब जने अब शांति से बैठ जाओ और अपनो कगजा पेन जरूरी धल लज्जो, चिठियाँ डालने हो सो डारियो, नहीं डालने हो तो माओ तो मन या बज्जा रो जी हारो है कि नहीं, डालने हो डार दज्जो, ना कछु बात नंजा के लिए पेन और कगजा धर लो संगे हम जाका थे। और अब बिना कछु देरी करें हम सोचा थे नहीं हुए तो अब का करिए, अपनी किस्सा शुरू करिए। तो हम बस देवा कहें कहानी के, अरे मोरे राम बात है जा बड़ी पुरानी के, अरे मोरे राम बड़े बूढ़ों ने गड़ी कहानी के, अरे मोरे राम हमसे सुन लो उनकी बानी के, अरे मोरे राम अरे मोरे राम अरे मोरे राम के अरे मोरे राम। तो भज्जा बिन्नू हरो ऐसे ऐसे कुंवरपुर नाव को एक गांव तो ऊ गांव में तीन सगे भज्जा रहते, बड़े को नाव तो भैरो, दूसरे को नाव तो रघु, और हल्के बारे को नाव तो बिरजू। तीन ही भंजों के ब्याह हो गए थे और अपने उनके बाल बच्चे भी हते, और अकेले भी अपने पिताजी के संग सबरे इकट्ठे मिलजुल के रहते। कछु रोज बाद बच्चा रुका भाव की बीमारी के चलत और उनके पिताजी गुजर गए। सो जब सब उनको काम होगा 10-15-20 महीना रोज हो गए महीना, सो कछु रोज बाद उनके मन में बड़े भज्जा हरन के मन में विचार आओ कि पिताजी हो तो वे तो हाथी से गुजर ही गए, अब नहीं हो तो का है पंती नहीं हो अपनों ही से लेके अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लो चज्जे। अब आज के ज़माने के हिसाब से ठीक भी हती उनकी बात सोच वो समझ वो, मैंने उनने पिताजी की सभी चीज़न के बंटवारे की उन्हें परन लगी थी, ऐसे उनके विचार बनन लगी थी अकेले दो ही बड़े भंजन की, हल्को बार उन्हें हतो बिरजू ऊ तो तना बेचारो सीधो सादरो सो हतो सूहो तो उन्होंने हतो अकेले भज्जारो। उन्हें सोची कि चलो अब कराई ले तो अब का भाव। एक दिन उनने बड़े दाऊ भैरों ने अपने दो ही छोटे भाइयों से कही के कहे रघु और बिरजू ने हुए तो अपन अपने खेत और आम के जो पेड़ लगे हैं उनको बंटवारो ने कर ले। सो उन दो जनन ने उनसे कही के दाऊ तुमने जो कछु सोचो हुज्जे सो अच्छो ही सोचो हुज्जे, सो हमारा हो कौन इतराज नहीं है, सो जे सो करने हो आप हो सो कर लो, हमारा सब में राजी है, ऐसी उनने कह दई। अब फिर कहे बज्जा रो दाऊ दो जनन

हम पहलों खेत पलवा ले गए और कहने लगे कि देखो रघु, खेत अपन दोई जने आधो आधो बांट लें, ऐसो वे बंटवारो करन लगी, बेमतलब कि ऐसो ऊट पटांग सो। सो वे कहन लगी कि देखो अपन दोई जने ले हैं खेत आधो आधो, माने भैरो बड़े भज्जा और रघु, और खेत ले भी और खेत की मेड़ जो है वह बिरजू दे दे भी, आम के पेड़े हों ऐसो करत हैं कि जो अपनों आम के पेड़े हैं उनको ऊपरे को जो हिस्सा है ऊ हम ले ले भी, और बीच को हिस्सा है ऊ रघु तुम ले लज्जो हैं, और जड़ वारो जो हिस्सा है बिरजू दे दे भी। अब देख सुन रहे हो तुम और कैसो इनको हिंसा बाँट हो रहा हैं, अब तो मारे गुस्सा के बिरजू हों करो काटो तो मतलब खून ही नहीं, अकेले बिरजू ने खून कैसो घूट पियो, और जैसा ये नहीं है भैरों ने पूछ के काय बिरजू तो मैं कौन इतरा तो नहीं आई बंटवारी पे, अकेले कछु ने क्या वैसे उमदा उन्हें सोची कि अब का कजिए हमने तुम्हें कौन दिखा नहीं रहा कि हमने कैसे तुमने बंटवारा करो, सू तो बिल्कुल चिमा गाओ। इतना ही में होते से साहूकार किसान लाल निकलू और वो तीन ही हूँ एक संगे खेत पे देख के कहने लगू कि का बात है रे भज्जा भैरो, आज तो तुम तीन ही भज्जा रहो एक संगे निकल आए घर घर से। सो रघु कहने लगो कि अरे हम अपना बंटवारो कर रहे हैं किसान भज्जा, सो आज हमारे आए हैं। सो किशन लाल कहने लगे कि अरे भज्जा ई नेक काम में हमें नहीं तुमने बुला हुआ, अरे हमें बुला लेते सो हम तो इतना तुम्हारे छोटे काने को हिसाब किताब से बंटवारो कर लेते। सो बिरजू बीच में से बोल पारो हल्को बारो के अरे हमें नहीं कोनो जरूरत तुम्हारों की, तुम्हारी हमारे खुदाई अपनों बंटवारो कर ले भी, हमारे कम है हमारे बड़े भज्जा हरें। सो भज्जा हरो बिरजू हों सो टेढ़ो सो तना बतका सुन के साहूकार भज्जा हों तना भुआसी तो चढ़ गई भी गुस्सा के माने के जो कैसे बोल रहा हूँ हमसे हल्को होके, अकेले उतने में का कर तू सो मोह सो मरूरत अपनो चिमानो निकर गो साहूकार वो किशन लाल। अब तीन ही भज्जा खेत पे बंटवारो करके घरे पहुँचे, वो घर की बंटवारी में भैरो कहने लगो कि देखो अपने ना चार कोठा हैं, सो दो कोठा हमाए कहानी रघु और दो कोठा रघु की कहानी, और ऊपर की जो छत है बापन बिरजू हूँ दया देवी। अब सुन रहे भज्जा रो ऐसो हिस्सा करो कोठन को कि चार कोठन के दो दो हिस्सा दो ही ने ले ला बेचारियों छत दे दी, अब छत को हिस्सा वाली बात हो तो अकेले दे दे। और इतना ही मैं रघु कहने लगो कि देखो दाऊ जब पैसों की सिक्कों की थैल गया है इको सोई कछु हिस्सा कर लो बांट कर लो अपन। सो भैरों कहने लगो अरे बिल्कुल लिया तुम, सो ऐसा आरो करो जैसे जैसे रघु ने सो पूरी थैल गया उन्हें धरती में पलटाई। अब उमें जितने नए जमाने के चलवे वाले सिक्का हती सो बे तो दाऊ हरन ने दोई न धल लाए, और पुराने खोटे सिक्का जोन कोनो काम गत के नहीं थे सो वे सिक्का दे दे कौन हो बंटवारे में बिरजू के लाने। अब तो बिरजू अपन आप खो बैठू, अब ऐसो बंटवारो देख के उनकी पत्नी भी मारे गुस्सा की बिरजू पे ही टूट पड़ी के बने रहो तुम ऐसे ही साधु संत और मोंगा मसान से देख लो जिन भंजन पे तुम्हें इतनो घमंड, तो क्या रे हमारे भज्जा हैं सबका चुका है हमारे लाने, सो आज उन्हें तुम्हारी का दशा कर दई। भइयों के इतने बड़े धोखे से भीतर से बाहर लो बिरजू तो टूट गया तो, और पत्नी और ऊपर मोड़ा के संगे घर से कैसे करके वो मन अपनो कचोट के घर से बाहर निकल गओ हैं, और गांव के बाहरी टूटी सी टपरिया में जाके उको सहारो बनाओ और तरन लगो। अब दिमाग तो को बेजा खराब है तो दुखी भी बहुत है तो भीतर से, पर अब कहते नहीं कि मरता काने करता जैसो भगवान करा सू सो अपन पर जियत है आदमी मजबूरी में। अब भज्जा बिनु हरो अपनी पत्नी की चार बातें सुन के और ऊह हिम्मत देत भाई बिरजू कहने लगो कि हम जा रहे हैं और अपनी मेहनत से दो पैसा और राशन पानी को इंतजाम करते हैं। अब उतना बिरजू का है दर दर भटको भज्जा रहो अकेले कहूँ काम नहीं मेरे बेचारी हूँ, आखिरी में मरता कहने करता के हिसाब से साहूकार किशन लाल के लेंगा पहुँचो और काम और पैसा मांगन लगो। सोई किशन लाल कहने लगो काय भज्जा बिरजू देख लो अपनी भंजन को बंटवारो कैसो दो कौड़ी को कर दो तुम्हें, अब जानत तो है तो बिरजू अकेले का करिए चिमागाओ और नेचे मुड़ कर लेतना। अब बिरजू ने अपनी बंटवारी की एक एक आप बीती जब किसान हो बताई सो ऊँ तो भारी बहुत दुख लगो और कहने लगो भाई को भी सुनो तुम लग है ही दुख, और वो किसान कहने लगो कि तुम तुम्हारे संगे बहुत बड़ा भाव भज्जा और तुम्हारी पत्नी के संगे हैं, अब तुम चिंता न करो कल से तुम हमारे खेत पर काम कर भी आ जाओ और दो ही अपनी पत्नी हो भी संगे ले आ जाओ दो ही जने काम करियो ठीक है, और अब जो कछु हाल में जो राशन पानी है तना मना ले जाओ जो दो चार पैसा जो हम तुम्हें दे रहे काम चला भी हो सो तुम जो पैसा ले जाओ और अपने आज तो आजकल को काम चलाओ फिर तुम काम करने लगो सो सब तुम्हारा ठीक हो जाए कहीं ठीक है सो क्या सब करके गाओ बेचारो। अकेले भज्जा रहो किशन लाल ठहरू साहूकार उदना के अपमान को भूलो ने तो जैसी उन्हें ऐंठ से कही थी बिरजू ने उसे कि अरे हमारे कल ने अपनों बंटवारो, सो उन्हें बिरजू से कही कि बिरजू तुम्हें अपने भंजों के से अगर बदला लेने हो तो हमें बताओ हम करते हैं कछुई को उपाय, सो वो और आसान है तुमसे भंजों से बदला ले वो हम सब करवा दे तुम्हारो काम। सो बिरजू कहने लगो कैसो उपाय हो बताओ हमें देखा थे हम। अब भज्जा हरो किशन के मतलब किशन ने बिरजू से कही कि तुम्हारे

लगाए अकेले। अब क्या दनन्या के आदमी खुद गलती करा सो फिर बर्दाश्त ही करने पर थे। अब भज्जा हरो ऊ कह लगो किसान फिर खुद छत खोद दई फिर उगे बाद किसान कह लगो अभी एक काम करो बिरजू तुम अब तुम तुम्हारी फसल में मतलब तुम्हारे भाइयों की खेत में फसल अच्छी लहक रही है सो औरों ने बड़ो घमंड है कि हमारी तो फसल बेजा अच्छी उमदा ने कर है आसो सो तुम अपनी पत्नी के संगे जाओ और रात आई रात अपने हिंसा के जो मेड़ है बटोर दो हैं और जब मेड़ टूट जाए सो फिर उसके बाद में पेड़े की भी देख भी अपन को का करने अपन हो अकेले अब जाके मेड़ तोड़ दो तुम सुबह जा रहो क्या तो नन्या के दही दूध को जरा भी छाछ भी फूंक फूंक के पियत है सो ऐसे ही भी उनके दो ही भज्जा हरें दाऊ हरें उन्हें पता हती कि यार जो किसान को तो मतलब बिरजू को तो दिमाग फिर गाओ है जो तो यहाँ सो करो यहाँ सुनो कछु खेत में कोनू कारिस्तानी कट डारे सो हिसाब से भी खेत तरफ ही भगी इतने जाके देखो सो जो साँचों में लगो तो मेड़ हों टोरबे खोदबे हों बिल्कुल सो वे दौरे कहें अरे अरे तुम जो का कर रहे बिरजू तुम हमारी जब मेड़ टोर दे हो अपनी सो कहने लगे हमारे खेतन में पानी भर जाओ हमारी तो फसल ना सो जे सो कहने लगे भज्जा हमारी मेड़िया हम कछु करें अब इतने फिर चिमा गए दो ही भज्जा अब उन्हें लगो कि अब तो सब गड़बड़ है अब तो कछु ने कछु उपाय करने पर है अब जा हतु भज्जा रो कि बिरजू के ने एक एक उपाय जिन किशन लाल के हिसाब से अपनाए थे वे बिल्कुल ऊँसा ही उन्हें कर तो लाई अब और करे भी उन्हें अब तो बिरजू के मतलब दाऊ हरण हो तो बिरजू के हिंसा भी जाए भारी पड़ गाओ के बताई हूँ हिंसा नहीं दाऊ ने का नाश करी अपनी हर चीजन की और बिरजू की आप बीती तो पूरे गाँव में पता हो गई थी सो गाँव वारन से भी न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं आती दाऊ हरण हो बिल्कुल नहीं थी सो दाऊ हरें पहुँचे कहाँ राजा के दरबार में न्याय मांगवे अब जी सही रात दरबार पहुँचे सो राजा साहब से अच्छी एक की दो भिड़ाई बिरजू की और उन्हें सिरजा दाऊ और कहने लगे राजा साहब से कि राजा साहब बिरजू के कह रहा हो तू के तुम्हें जी से कहने हो तो क्या दज्जू हम राजा साहब से नहीं डरा तो तुम्हें राजा से कहने हो तो क्या दज्जू अब भज्जा रो ऐसी बात सुन के तो राजा तम तम आ गो कहने लगो ऐसी बात बोले बुलाओ हम हों दे हैं दंड अब ये चाहते ही थे कि हों 40 कोड़े मारो और हों बेदखल कर दो चीजन से अब भज्जा रो राज दरबार में बिरजू हों पेश करो और बिरजू ने कही देखो राजा साहब हम सब कछु से अभी तक जा रहे हैं अकेले हमारी पहलू सुन लो आप बीती सो उन्हें सबरी आप बीती राजा साहब को सुनाई राजा साहब ने जैसे की आप बीती सुनी सो कहने लगे अरे तुम्हारे संगे तो बहुत गलत भाव है सो उनने कही रो जाओ अब तुम कहने लगे कह भैरव और रघु कहने लगे तुम और यहाँ सजा के दंड के भागीदार तो कहने लगे तुम्हें दई जे सजा अब तो और सो फिर इन हों रघु हों और भैरव हों राजा साहब ने 40-40 कोड़े मारवे की सजा सुनाई और इतने दिना से परेशान भाव बेचारो बिरजू अपनी एक एक चीज से सो ऊ के बदले में राजा कहने लगे हमारे हो भाई तुम परेशान भाई सो ऊ के बदले में राजा साहब ने हों का करो इनाम दा उल्टो कि 10 एकड़ जमीन दई और 50,000 अब सोने मतलब 50,000 नगद रुपये जय दाई और बढ़िया बिरजू से कही के जाओ तुम अपनी हिस्सा में जो तुम्हारे भंजों ने याद वादो करो तो तुम उनमें से हिसाब से वो दियो ना फिर तुम और कि हम और खबर लें सो 40-40 कूड़े भी परे उन्होंने दो ही बड़े भज्जहरन हो और उन्होंने अपनों हिसाब भी देने पर फिर से बिरजू को अपनी खेती में से भी और ना राजा साहब ने दई सो अलग सो भज्जहरो दो जने राजा साहब से माफ़ी मांग लेंगे राजा साहब कहने लगे कि अब ऐसी नहीं करो हमें माफ़ कर दो कहने लगे यहाँ माफ़ी की सजा तो सजा ही होते वहाँ नहीं हो सकत कचू माफ़ आप नहीं हो सकत अब इन्हों अच्छी सजा भी पड़ गई और तो भज्जा रो ऐसे मतलब बिरजू को अपने सीधेपन को और अपने सहजता को फल मिलो कि दो ही भंजों ने जरूर के संगे गलत करो लेकिन राजा ने उसके संगे सही न्याय करो उखो हिस्सा भी दिलवाओ और इनाम भी मिली उके लाने बदले में तो भज्जा रो इसके साथ हती सुजा भाई पूरी और इमें सीख जा मिल रही है किसा से कि अगर आदमी सच्चो है तो ऊँ और मेहनत कर रहा है तो ऊँ लालच लोभ करने की जरूरत नहीं है कैसे बेईमानी और लोभ लालच को अंत खराब होते है ठीक है अब भज्जा हरो अब किसा भी हो गई और इमें एक प्रश्न बन रहा है सो ऊ आप और हो लिखने हैं सुन लई हो किसा तो लिख लो तो किसा में कौन सो का तुमने सुनो ऊ को तुम्हें उत्तर फिर जवाई मिले जब तुमने सुनी हुई सो हम ही को प्रश्न बताऊ थे कि आज की किसा में प्रश्न का बन रहा सो प्रश्न को प्रश्न तो मोरा लिख लो और उत्तर पता हो जैसे उत्तर चिट्ठियान के माध्यम से पहुंचा दज्जू तो प्रश्न है आज की ईसा को बिरजू खो खेत के बंटवारे में का मिलो तो जो प्रश्न होगा भज्जरों को बिरजू खो खेत के बंटवारे में का मिलो तो अब हमने प्रश्न भी बता दो आप को और पता भी बताए देते हैं सो पता है अपनों कार्यक्रम कृषि जगत बसदेवा द्वारा उपनिदेशक केंद्र उपनिदेशक आकाशवाणी कटंगा जबलपुर मध्य प्रदेश और पोस्ट बॉक्स नंबर 14 पिन कोड है 4800001 तो भज्जारो पता सोई बता दो है और आप और अन्य प्रश्न सोई लिख लो सो चिट्ठियाँ 15 दिना के भीतर जरूरी जरूर पहुँचा दज्जू कैसे के भज्जारो हमें तो लगन लगा थे कि तुम्हारे जब सुनत हो
हमारी जे बस देवा है चाहे कोनो भी

कार्यक्रम सुना थो, तो उनको कछु लिख के तो पहुँचा, तो हम और अच्छो लगा थे कि तलो भज्जारा सुना थे, तो चिट्ठियाँ डार के हम और को उत्साह तो बढ़ाऊ थे। सो भज्जारो ऐसे अब हम तुम और से विनती कर रहे हैं कि चिट्ठियाँ जरूर डारी हो, पता बता दो है, और अब हो रही हरे हरे हमारे जाबी की बीरा। सो सबसे अब हम ले हैं इजाजत, तो हम बस देवा चल दे रे के अरे मोरे राम, सब रे भैया बहनन खो के अरे मोरे राम, जानकी भौजी की राम राम के अरे मोरे राम, और जय जवान जय किसान।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। सुर्खियों में कार्यक्रम अब आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।

0: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोधकी।
2: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
3: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जी भारत में हैं और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4th या 5th जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची की मौजूदगी में कई MOUs पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
3: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
2: जी।
3: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई
2: जी।
3: और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग

0: के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अम्बेसडर तायल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज एआई की फील्ड में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
3: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है। चाहे वो हम मेट्रो देखें,
1: जी
3: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो
1: जी
3: देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है, और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
3: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है। और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है। और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
3: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों
1: बिल्कुल
3: देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते
1: जी,
3: हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान की प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। चलिए उसको सुनते हैं।
4: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
3: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उस लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हों, फार्मास्यूटिकल्स की हों, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय अब दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
3: देखिए, बायोगैस और जितना भी, चाहे वो तेल हो और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े, जो उसको इस्तेमाल करते हैं उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा। और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
3: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए,
1: जी
3: एक

0: होना चाहिए। और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान, इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात आजकल कोई भी इकोनॉमी कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती है,
1: बिल्कुल
0: वो सब देशों से कहीं से आयात होता है कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का। और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
1: अंबेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है विजयपथ फिल्म से, शब्द रचना फैज अनवर की, संगीत अनु मलिक का, आवाज़ कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम का गाया त्रिदेव फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत माया गोविंद का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, आवाज किशोर कुमार और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है पिघलता आसमान।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को. गीतकार थे संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. फिल्म का नाम था प्यासा सावन. कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत. राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस मधुर गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने.

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है।

भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगा

0: किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी

0: ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धारावाहिक हंसना मना है की सातवीं कड़ी, आलेख हेमंत कुलकर्णी का।

0: धारावाहिक हंसना मना है के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। आइए आरंभ करें आज की नई कड़ी कुलकर्णी बंधुओं के साथ, यानी दत्तात्रेय कुलकर्णी और हेमंत कुलकर्णी की इस प्रस्तुति के साथ।
1: राम राम भैया।
2: राम राम राम राम राम राम। अरे अच्छे मिल गए।
1: और कल मिलते कैसे नहीं?
2: अरे मिलते कैसे नहीं, मतलब हम आए जरूर कि चलो तुमसे मिलाए, मुलाकात हो जाए। भाई रोज का ही टाइम है।
1: अरे और कर दो,
2: मिलते जुलते हैं। पर आज हमको अचरज हो रहा है, है? मतलब तुम्हारी आवाज आ गई ना, तो हमें तसल्ली हो गई कि चलो घर में तो है।
1: अरे आज प्रोग्राम नहीं है क्या?
2: कौन सा?
1: अरे हंसना मना है।
2: अरे हाँ। अच्छा एक बात है, पर तुम ये कहते जरूर हो कि आज प्रोग्राम है, और नाम देखो तुमने दिया क्या है हमको, हंसना मना है।
1: नहीं तो विचार करने की बात है।
2: अरे जे मैं भी यही कहने वाला था, बिल्कुल विचार करने वाली बात है। क्योंकि आजकल कहीं भी नजर दौड़ा तुम, ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बातचीत हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे आपस की बात हो, चाहे बच्चों की हो, औरतों की हो, बुजुर्गों की हो, बात सुन के हंसी आई जाती है।
1: इसलिए आ जाते ना, आदमी परेशान है खूब
2: परेशान।
1: मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए।
2: देखो एक किस्सा बताएं, अभी एक बात बोल गए तुम, आदमी परेशान है। आदमी नहीं, हम एक किस्सा अगर तुम्हें बताएं, आदमी तो आदमी, जानवर भी परेशान है।
1: अच्छा
2: बता क्या। देखो हम बताएं क्या हुआ। एक बार एक अस्तबल में,
1: अच्छा
2: अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े
1: बांधते हैं,
2: अब आए तो घोड़े अपने बांध दिए, वहाँ दो घोड़े खड़े थे। अब देखना मजे की बात। अब क्या हुआ कि दो घोड़े खड़े हैं, उनके मुंह में थैली बंधी है, चना खा रहा है, घास भी डली है, एक घास खा रहा, एक चना
1: खा रहा,
2: ये सब चल रहा था। अब हमको घोड़ों की बोली समझ में आ जाती है।
1: आजा
2: हंसना नहीं
1: देखो,
2: हंसना नहीं देखो,
1: नहीं हम हंस नहीं रहे।
2: अब तो क्या हुआ कि एक घोड़ा दूसरे से बोला, बोल बताओ यार क्या अपनी जिंदगी है, क्या अपनी किस्मत है।
1: हो
2: तो दूसरा बोला क्यों क्या हो गया। अरे बोल नहीं, हमारा मतलब अपने से अच्छा तो इंसान है।
1: हाँ
2: वो घोड़ा बोला।
1: अच्छा
2: तो बोले कैसे। बोले और क्या है, कैसे का कैसे, देखो अभी अपन एक घंटे पहले, आधा घंटा पहले रेस के मैदान में थे।
1: हाँ हाँ हाँ बे दौड़ने
2: दौड़ में हो, रेस के मैदान में
1: हो।
2: तो बोले दौड़ते अपन है,
1: हाँ
2: फसुगर अपने मुंह से निकलता
1: हो,
2: मेहनत अपन करते
1: हो,
2: और अपने को जो इनाम लगाया जाता अपने ऊपर
1: हो,
2: वो इनाम जी आदमी लूट के
1: आदमी ले जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले
2: तो
1: जाता।
2: वो घोड़ा बोला कि इसके बावजूद भी, मतलब लाखों का इनाम वो

0: इंसान ले जाता है आदमी।
1: हाँ,
0: अपनी किस्मत देखो कि इसके बाद भी अपने को जो चने
1: खाना पड़ता है, चारा खाना। सही बात है, सही बात है।
0: तो दूसरा घोड़ा बोला कि नहीं भैया, ऐसे अपने मन को पीछे ना ढके लो।
1: अच्छा,
0: हाँ देखो हम बताएं तो वो दूसरा घोड़ा बोला कि तुम ऐसे अपने मन को पीछे ना खींचो, अपन अच्छे हैं, इंसान बेवकूफ है।
1: अच्छा, वो घोड़ा कह रहा है। अच्छा,
0: तो बोले कैसे? बोले कैसे का, देखो अपन 10 घोड़े दौड़ रहे थे मैदान में, 10,000 के इंसानों की भीड़ अपनी तमाशे को देखने को आए, अपनी दौड़ देखने आए। कल 10,000 इंसानों की दौड़ रख दो, एक भी घोड़ा देखने नहीं जाएगा। है नहीं? अब ये किस्सा सुनो तो हंसी तो आई जाती।
1: बिल्कुल आती है।
0: और ऊपर से तुम कहते हो हंसना मना है।
1: भाई इसलिए हंसना मना है, मतलब सोचो बात को।
0: अच्छा,
1: हंसना मना है।
0: हाँ हाँ,
1: हमने बोल दिया हंसना मना है।
0: हाँ,
1: अब तुम इस बात पे विचार करो, हंसना क्यों मना है? मतलब इसमें जरूर कोई ऐसी बात होगी जिससे हंसी आती होगी।
0: आती होगी, ये समझे तुम।
1: अजय, तुमने घोड़े की बात बताई ना।
0: हाँ,
1: एक किस्सा हमको भी मालूम।
0: अच्छा,
1: अब प्रोग्राम तो अपन बाद में सुनेंगे, हमारे अपने किस्से सुन लो। तो ये भी तो प्रोग्राम ही है कि नहीं?
0: नहीं और भैया, बिजली है नहीं है।
1: हाँ,
0: है नहीं।
1: हाँ,
0: तब तक अंधेरे में भी बैठे बैठे भाई उजाला होता है तो कम से कम एक दूसरा आदमी एक दूसरे को देख लेता है।
1: हाँ, वही तो।
0: बिजली भी नहीं है।
1: हाँ,
0: कार्यक्रम भी नहीं सुन पाएंगे।
1: अरे भाई, बिजली से समझ ही नहीं रहे तुम।
0: हाँ,
1: बिजली अगर गोल भी हो गई।
0: हाँ,
1: रेडियो भर बंद हुए, ट्रांजिस्टर तो सेल से चला थे ना।
0: हाँ, ये बात खूब बताई। अच्छा, जब बिजली पैसे याद आई, अब जे समस्या तो सब तरफ हो गई।
1: अरे खूब समस्या हो गई।
0: समस्या काहे नहीं होगी यार भैया?
1: काहे
0: भाई, देखो पर्यावरण जहां तक बात है,
1: हैं?
0: अब पर्यावरण से अगर तुम खिलवाड़ कर रहे हो।
1: हाँ हाँ,
0: वर्षा ऋतु।
1: हाँ,
0: अब पानी नहीं बरसो।
1: हाँ हाँ,
0: पानी नहीं है तो बिजली नहीं हो रही।
1: हाँ हाँ,
0: अब बिजली हो भी रही है तो आदमी इतने बढ़ गए, कारखाने इतने बढ़ गए। हाँ हाँ, बिजली कहाँ तक पहुंचा?
1: अरे ये तो वही बात हो गई, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई?
0: कैसे
1: क्यों?
0: हाँ,
1: मार विकास करना है, विकास करना है, सबरे जंगल चुड़वा जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: आज सबरे ढें हो गई।
0: हाँ,
1: पर्यावरण पर्यावरण
0: ठीक कह रहे तुम,
1: न तुम तोड़ते।
0: तुमने अभी कल परसों का अगर अखबार पढ़ा होगा तो उसमें यही बात आई है, को नेता है, किससे बात हुई तो वो नेता जी से पूछा कि भाई आप यहाँ बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? तो वे कहने हमारे पास है ही नहीं है बिजली उतनी।
1: अरे है नहीं मतलब उनको बिजली नहीं दोगे?
0: नहीं। हाँ, है नहीं
1: तो हल तो निकालो,
0: हल निकालो। तुम तो हमें सरकार में भेजो, हमें एक मिनट में हल निकाल दे।
1: चलो मान लो हमने भेज दो तुम्हें सरकार।
0: अब जैसे तुम हो।
1: हाँ,
0: तुम चिल्ला रहे कि तुम्हें बिजली चाहिए,
1: बिजली दो। हाँ, बिजली दो।
0: हाँ ठीक है।
1: हाँ,
0: तो चिल्लाओ, हड़ताल करो।
1: हाँ,
0: हम तो फट से कह देंगे ठीक है, पहले तुम एक लालटेन खरीदो।
1: हैं हम?
0: हाँ, वो की रसीद हमें दिखाओ कि हाँ तुम्हारे पास लालटेन है।
1: हाँ,
0: तो फिर हम बिजली दे।
1: अरे
0: जे में अगर गुल हो गई तो कम से कम लालटेन तो जला लोगे।
1: अरे वाह, क्या धुरंधरी बात है। माने हम पहले लालटेन खरीदे।
0: हाँ,
1: अरे जब हम बिना खरीद के जलाते हैं तो खरीदने से क्या मतलब है?
0: अच्छा,
1: रसीद तुमको काय को दिखाए?
0: अच्छा, और तुम एक समस्या नहीं समझे?
1: हम समझ गए ना,
0: लालटेन खरीद लोगे तो मिट्टी को तेल।
1: हाँ,
0: हाँ, तो समस्याएं तो
1: मतलब तुम एक के बाद बता जाओ भाई।
0: हाँ,
1: हमें मालूम है, एक कहानी याद है।
0: अच्छा,
1: कब हो? एक राजा रहो।
0: हाँ,
1: अब राजा रहो तो उन्हें यज्ञ करो बहुत बड़ो।
0: अच्छा,
1: और सबको दान दे रहो तुम।
0: हाँ,
1: तो दान दे दे का भाव कि एक रूसी आए।
0: अच्छा,
1: अब वे रूसी बेचारे आड़े टेढ़े रहे।
0: हाँ,
1: अब वे आए राजा को वरदान देने के लिए आए थे।
0: अच्छा,
1: और राजा के दरबार ने उनको देखा और सब हंसने लगे, हे उनका मजाक उड़ाने लगे।
0: हाँ हाँ,
1: आड़े टेढ़े देख।
0: और क्या,
1: और जैसे भैया अभी खुर्रा गए, कह लगे राजा हम तुम्हें 3 वरदान देने वाले रहे, अब एक ही वरदान देंगे बस।
0: अच्छा, बे ऋषि बोले।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: मांग लो वरदान।
0: हाँ,
1: आज राजा ने कहा करो तुम्हारी सरकार घाई करो।
0: कैसे?
1: राजा ने झट्ट ही उन्हीं को उल्टा दो।
0: अच्छा एक मिनट, तुम अब जो बोल रहे तुम्हारी सरकार खाई, सरकार हमारी है तो का तुम्हारी नहीं है का?
1: अरे हमारी होते तो समस्या ना सुनती।
0: अच्छा
1: फिर?
0: हाँ खैर, का भाव फिर?
1: फिर का राजा ने उन्हीं को पलटा दो, रूसी को।
0: अच्छा
1: क्या सो उनने कही ये कई वरदान देंगे बस
0: हाँ।
1: राजा ने कही अच्छा महाराज मांग ले
0: हाँ।
1: कही मांगो तो राजा कहने लगा हमको 3 वरदान चाहिए समझना बात को
0: अकल की बात हो गई यार
1: राजा कहने लगो हमें हाँ। 3 वरदान चाहिए
0: हाँ।
1: कहने लगे अब वो रुसे भी चक्कर में यार अपन ने तो 1 की बोली थी लेकिन राजा ने 1 में बोली है कि हमको 3 वरदान चाहिए
0: हाँ।
1: तो अब फंस तो गए थे
0: हाँ।
1: कहने लगा अच्छा चलो बोलो कही हमको 1 वरदान में फलाना दे दो कही दे दो 1 में जे दे दो दे दो राजा भी कही बचो संभाल के
0: हाँ 2 हो गए
1: कहने लगे हमें 3 वरदान चाहिए
0: फिर से अच्छा
1: अब जब भी राजा 1 वरदान बचे हाँ? तो 3 मांग ले यहाँ से चलत गए यहाँ से चलत गए
2: हंसना मना है हंसना मना है अरे हंसना मना है
3: हंसना मना है
2: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
3: हंसना मना है
4: और आइए इस चर्चा को रोक कर सुने संजय गायकवाड़ को
5: जैसा कि अप्रैल और मई का महीना जो परीक्षाओं का होता है ऐसे ही समय एक परिवार में साफ सफाई का कार्यक्रम चालू था अचानक पिताजी के हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड आई और उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया कहा इधर आ घनश्याम इधर आ है नालायक कितनी बार तुमसे बोला पढ़ने बैठा करो नहीं बैठते ये देखो तुम है हिंदी में 50 में से 7 अंग्रेजी में ये देखो 50 में से 3 है जब विज्ञान में 2 अरे राम राम अच्छे से देखो है कितनी बार तुमसे बोला अच्छे से पढ़ा करो तो लड़का तुरंत बोला बाबू अच्छे से देखो जी आपकी है कि हमारी है
6: बहुत बढ़िया
5: नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा मैं मुझे मत बताओ अब ये क्या है तुम्हारे सालाना जो एग्जाम आ रहे हैं इसमें आप एक बात याद रखो कि आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई किया करो
7: करते तो हैं बाबू जी
5: कहाँ करते हो दिन भर घूमते रहते हो टीवी देखते हो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो कहाँ पढ़ाई करते हो
7: आप जब सो जाते हो जब ही तो हम पढ़ते हैं
5: अच्छा बेटा जब हम सो जाते हैं जब तुम पढ़ाई करते हो है अच्छा अच्छा ठीक देखता हूँ मैं कैसी पढ़ाई करते हो और साहब ये वार्तालाप जब हुई रात का वक्त हुआ पिताजी ने अपना खाना खाया खाना खाने के बाद में अपने रूम में सोने चले गए और रात को 1:30-2 के आसपास जब अपनी निजी समस्या का समाधान के लिए उठे नींद से जगे तो उन्होंने देखा वाकई बबलू के कमरे की लाइट जल रही है और उनको अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने बच्चे को सुबह आज जबरदस्ती डांट दिया ये बच्चा तो वाकई मेरे पढ़ने सोने के बाद में वाकई पढ़ता है और अभी 1:30-2 का वक्त चल रहा है यार बहुत सुबह शाम को 9 बजे से बैठा हुआ है तो चलो अब इसको बोल दें कि अब बहुत पढ़ लिया सुबह उठ जाना अब चलो सो जाओ जैसे ही साहब पिताजी ने दरवाजा खोला तो देखा बबलू जो थे वो टेबल पे सर रख के सो रहे थे खर्राटा लेते हुए पिताजी का दिमाग सातवें आसमान पर कहला ए बबलू उठो यही पढ़ाई हो रही तुम्हारी नालायक हमसे झूठ बोलते हो दिन में क्या बोल रहे थे उठो उठो उठो कहला क्या है कहला क्या है तुमने क्या बोला था दिन में है तुमने बोला था ना जब हम सो जाते हैं जब तुम पढ़ते हो है अभी तुम पढ़ रहे हो तो लड़का तुरंत बोला आप भी कहाँ सो रहे हो आप भी तो जाग रहे हो साहब कलाकार और मूर्ख ये जन्म से पैदा होते हैं इन्हें बनाया नहीं जा सकता
6: बहुत बढ़िया
5: ये बिल्कुल सही बात है कलाकार और मूर्ख ये जन्म से पैदा होते हैं एक अभी हमारे विज्ञान ने हमारे इंडिया के हमारे वर्ल्ड के साइंस ने इतनी तेजी से तरक्की कर ली है लेकिन मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे और वैद्य का राज चलता था लोग वैद्य के पास में जाते थे अपनी बीमारी दुख परेशानी का इलाज करने के लिए उन दिनों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो एक मूर्ख जो स्वभाव से भुलक्कड़ था वो पहुंचा बैदराज जी के पास में
8: राम राम बैदराज जी
5: कहले आवा बाबा क्या बात है क्या तकलीफ है
8: कल तकलीफ तो ऐसी है पेट मरोड़ सी उठती हमको, हम क्या बताएं असहनी पीड़ा हो रही।
5: कहने अच्छा अच्छा जी बताओ तुमने कल खाया क्या था।
8: कहने खाने में तो हम जरा शादी में चले गए थे तो हमने खूब पूरी ठूस ली, हलवा दही बड़ा छोला अजर गजर सब कुछ खा लिया, दर्द क्यों हो रहा।
5: कहने ये सब खाया ना गचर पचर तुमने इसलिए दर्द हो रहा।
8: कहने तो फिर पराठे खा सकते।
5: फिर पराठे पे मरे जा रहे तुम है। पराठा राठा नहीं भैया, एक काम एक बात सुनो, कल से तुमको केवल खिचड़ी खाना है, समझ गए, और कुछ नहीं खाना।
8: कहले ठीक है फीस।
5: कहले फीस इसको नहीं, 2-3 दिन खिचड़ी खाओ, उसके बाद में फिर हमसे दर्द अगर होगा तो फिर हम दवाई बताएंगे। हम माने हुए वैद्य हैं, हम जो बोल देते हैं वो होता है, समझ गए, जाओ खिचड़ी खाना। अब वो जो मूर्ख आदमी था वो स्वभाव से भुलक्कड़ भी था। अब उसने सोचा कि साहब अगर मैं एक बार दिमाग में रख लूंगा तो कहीं भूल जाऊंगा तो कहते हुए क्यों ना चलूं। तो उसने कहते हुए शुरू किया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। कहते कहते साहब बहुत 2-4-6 मील निकल गया। उसी समय एक और निजी समस्या का समाधान जब उसके सामने आया तो अपने समस्या को शांत करने के लिए जैसे एक तरफ खड़ा हुआ तो वो भूल गया कि बैदराज जी ने बताया क्या था खाने के लिए। लेकिन साहब भुलक्कड़ तो भुलक्कड़, यार कुछ ऐसा बताया था खचड़ी खचड़ी खाचड़ी हाँ खाचड़ी बताया था। फिर वहां से वो शुरू हुआ, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। थोड़ा और आगे गया साहब तो एक किसान अपने खेत से चिड़ैयों को भगा रहा था। ये तुरंत बोलते हुए निकले वहां से, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उस किसान ने इनको रोका और 2-4 धम्म दिए। कहले ऐसे मत बोलो, क्या बोल रहे हो खाचड़ी, हम भगा रहे हैं सुबह से, तुम दोपहर हो गई तुम बोल रहे हो खाचड़ी खाचड़ी, ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोलो उड़चड़ी उड़चड़ी। कहले ठीक है साहब, उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। एक शिकारी सुबह से जाल फैला के चिड़ियों को पकड़ रहा था, भैया पहुंच गए, उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। उसने भी पकड़ा, भैया को दे धमाधम। कहले भैया तुम कब बोले। कहले ऐसा मत बोलो है, हम जाल डाल के बैठे हैं फंसाने के लिए और तुम बोल रहे हो कि उड़चड़ी उड़चड़ी, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ। अब जो उधर से आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ, वहां से डाकू आ रहे थे, सारे के सारे रुक गए। कहले क्यों रे, क्या बोल रहा है, है? आते जाओ फंसते जाओ, ऐसा बोलो बेटा, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। अब जब वहां से खिचड़ी से जो शुरू हुए तो आ गए, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। एक राजा के दरबार में लड़का हुआ, अब जो वहां पे लगे, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, मंत्रियों ने जेल में डाल दिया। कहले क्या बोल रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए क्या, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो। अब बोल लगा मूर्ख, ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो। चलते चलते चलते चलते साहब एक शव यात्रा आ रही थी, उसी के सामने जाके कलने लगे, ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो। वहां के लोगों ने पकड़ा और दे भका भक दे भक भक खूब मारा। और जब कुट पेट के अपने घर में आए तो पड़ोस की महिला बोलती,
7: काय कैसे मारू है बता, ऐसे मारो इनकी धंधारा ऐसी हो गई कि अब तो जो 2-3 दिन तक पानी न मांगे, इनको तो खिचड़ी आई दो।
5: अरे कह यार वही खिचड़ी बैठ गए।
4: दत्तात्रेय कुलकर्णी और हेमंत कुलकर्णी
1: दो भैंसे रही
0: हैं।
1: कागज खा रही थी अखबार को कागज।
0: अच्छा
1: एक भैंस कहने लगी, अब कैसे कि कागज में गुड़ गुड़ लगा रहे ना तो खा जाते
0: भैंस। हाँ, जानवर तो खाते ही
1: खास खास। एक भैंस दूसरे से कहने लगी, ये देखो इसे का छपो है, एक आदमी की लुगाई गुम गई।
0: हाँ
1: एक आदमी की लुगाई गुम गई।
0: अच्छा मतलब वो अखबार में लिखो
1: है। हाँ। एक आदमी की लुगाई गुम गई। हाँ। तो उन्हें छपा है। हाँ। कि हमारी ऐसी ऐसी लुगाई गुम गई है, जो कोई ढूंढ के लाएगा उसको 50 रुपया इनाम और आने जाने का किराया दिया जाएगा।
0: अच्छा 50 रुपये इनाम।
1: हाँ
0: 50 रुपये बहुत।
1: तो दूसरी भैंस कहने लगी, अरे तो इससे तो अपने ही अच्छे हैं कहीं।
0: कैसे
1: इससे तो अपने ही अच्छे
0: कैसे है?
1: देखो कहीं इस कागज में क्या छपा है।
0: क्या है?
1: इसमें छपा है कि एक आदमी की टेढ़े सींग वाली काले रंग की मुर्रा भैंस गुम गई।
0: अच्छा,
1: एक आदमी की टेढ़े सींग वाली काले रंग की मुर्रा भैंस गुम गई। जो कोई ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपया इनाम मिलेगा।
0: मतलब समय कितना बदल गया।
1: इंसान की कीमत 50 रुपए और भैंस की 500। कर रहे
0: नहीं, देखो
1: ऐसा ही तो तुम लोग कर रहे।
0: हम क्या कर रहे,
1: समझ नहीं रहेगा।
0: ऐसे ही हम कर रहे
1: और क्या
0: क्या कर रहे,
1: क्यों नहीं कर रहे तुम लोग?
0: हम क्या कर रहे भाई?
1: अरे गजब कर रहे, तुम्हारी होने तो सब कुछ कर जा रहे।
0: अच्छा,
1: आदमी को पिरो डाल रहे बिल्कुल।
0: देखो हम बताएं, जहाँ तक हंसी मजाक की बात है, अब जैसे तुम किस से सुना रहे है नहीं, ऐसे ही छुटपुट बातें अब कर ली। हमारा वो छोटो सो लड़का वो बैठो।
1: अच्छा,
0: अब जिस लड़का का है पढ़न लिखन लगे ना, इतने उते जा रहा है, चार लोगों में आ रहा है जा रहा है।
1: अब स्कूल में तो पढ़ाई होत नहीं है।
0: जे बात गलत कह रहे तुम।
1: अरे भाई,
0: जे गलत कह रहे, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही ठीक है ना। हम कहाँ मना कर रहे, पर भाई वो कोचिंग तो जाता है ना।
1: काहे में
0: कोचिंग?
1: हाँ ट्यूशन।
0: हाँ ट्यूशन,
1: ट्यूशन जाते।
0: अब आजकल उसको ट्यूशन नहीं बोला जाता।
1: अच्छा
0: कोचिंग।
1: अच्छा कोचिंग।
0: आज ये भी एक हंसी की बात है।
1: हाँ
0: भाई, पड़ोसी का लड़का कोचिंग में जा रहा
1: हो
0: और हमारा लड़का नहीं जा रहा, तो समझ लो कि मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है और ना ही हमारे लड़का की इज्जत है।
1: अच्छा
0: फैशन।
1: हाँ,
0: कोचिंग में जाबो जरूरी है।
1: जरूरी है।
0: अब भी लड़का बड़े तेज दिमाग के हो गए।
1: अच्छा
0: हाँ, कल हमें एकदम से याद आई, मतलब ऐसे किससे कहानी हमारी उनकी चल रही थी। अब भाई लड़का है, पर कभी फुर्सत से उनके पास बैठो तो,
1: और क्या नहीं,
0: उनके भी हाल हवाल पूछो।
1: हाँ, हाँ।
0: जरा उनसे भी बातचीत करो। अब वो इतनो तेज है वो लड़का।
1: अच्छा,
0: अरे एक दो बातें उन्हें हमसे पूछी, देखो हम तुम्हें बताएं।
1: हाँ।
0: यानी हम बल्कि तुम्हें कह रहे।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: बूझो तो जाने, हम तो जय बोलेंगे।
1: अच्छा पहेली।
0: हाँ पहेली समझ लो।
1: पूछो।
0: जैसे उसने हमसे एक बात पूछी
1: है,
0: बोले बाबू जी बताओ वो कौन सा गम है। देखना भैया तुम भी सुनना जरा।
1: हाँ।
0: हैं, हम भी एकदम चकरा गए।
1: हाँ।
0: हैं, उन्हें हमसे कहा पूछी वो कौन सा गम है जिसका संबंध दुख से नहीं है।
1: अरे बाप रे, माने गम का मतलब है तो दुख होता है ना।
0: हाँ, और वो हम बिद गए वो की बात में।
1: मैंने
0: कैसे बोलने फिर से।
1: हाँ।
0: तो कहने लगो कि बाबू मतलब ये बताओ वो कौन सा गम है जिसका संबंध दुख से नहीं है।
1: हाँ, तो कौन सा है?
0: तो हमने भाई दुख से नहीं है तो और कोई से तो संबंध होगा।
1: हाँ।
0: तो कहने लगे संगीत से है। अब संगीत तो है, हम तो जाने नहीं।
1: हाँ, इसे को जाना संगीत।
0: तो हमें संगीत के बारे में कुछ ख्याल नहीं। 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, हम ओके बात को उत्तर नहीं दे पाए।
1: अच्छा।
0: तो हमने कहा यार ठीक है, अपन को नहीं मालूम पड़ा, समस्या यही ने पूछी है।
1: हाँ, यही से पूछो।
0: यही से पूछो ना।
1: और का बिल्कुल ठीक।
0: अरे जब तुम समस्या दे सको भाई, जे
1: हाँ, जो हो रहा हो तुम्हें बनने चाहिए।
0: जो ही हो रहा हो,
1: हाँ।
0: तुम हम जनता है।
1: हाँ।
0: और कोई दूसरी सरकार है।
1: हाँ, हाँ।
0: जब ये सरकार है अपन जनता है।
1: हाँ।
0: तो चाहे सरकार जनता को चाहे जनता सरकार को।
1: हाँ।
0: समस्या तो दे देते।
1: हाँ।
0: अरे निराकरण भी तो दे भैया।
1: बिल्कुल देना चाहिए ना।
0: वही बात हमारे दिमाग में आई।
1: हाँ, अच्छा
0: जो लड़का है।
1: हाँ।
0: जो समस्या दे रहा हो हमें।
1: हाँ।
0: यही से पूछो ना।
1: पूछो।
0: तो मैंने उसे पूछ ली। अच्छा तुम बताओ, हमसे तो नहीं बन रहा, वो कौन सा दुख है जिसका संबंध संगीत से है और दुख से नहीं है। अब तुम ही बताओ, हम तो नहीं जानते। कहने लगो सरगम। मैंने बताओ यार, है छोटू लड़का पर बात तो दिमाग की कर रही।
1: सरगम में गम है।
0: हाँ? है?
1: हाँ? सरगम में गम है।
0: हाँ?
1: और गम में दुख नहीं है।
0: हाँ?
1: अरे बहुत दिमाग की बात करी रे।
0: अरे एकदम से वो कहने लगो,
1: ये लड़का ऐसे ही तो ज्यादा होशियार हो गए। और भी पूछो उन्हें।
0: अरे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्हें पूछी।
1: बता जल्दी बताओ हमको कौन कौन सी पूछी।
0: अब
1: हमें मालूम हो जाए, हम दूसरों को बताएंगे।
0: हाँ ठीक है ना। उन्हें एक बात बड़ी विकट पूछी हमसे।
1: अच्छा
0: कहने लगो बाबू जी बताओ दुनिया में सबसे खतरनाक सिटी कौन सी है।
1: खतरनाक
0: सिटी।
1: सिटी
0: सिटी यार, अब तुम्हारे हमारे अपन अपने समझ कहाँ इतनी अंग्रेजी रही। सिटी मतलब मैंने फिर पूछी।
1: हाँ
0: तो कहना शहर शहर
1: अच्छा शहर
0: अच्छा तो मैंने तो शहर का ही नहीं बोले बोले फिर तो मजा ही खत्म हो गई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हमारे पहली जो है वो की मजा ही खत्म हो गई।

0: पूछो,
1: कोने पूछी हमसे दुनिया में सबसे खतरनाक सिटी कौन सी है।
0: हाँ बता।
1: हम नहीं बता पाए तो हमने फिर से उसे पूछे, हमने कहा तुम ही बताओ, कह लो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बातें ऐसी है कि सुनो तो हंसी तो

0: कंप्यूटर आ गए हो, है नहीं?
1: हाँ हाँ हाँ
0: जो चीज तुमने हमने देखी नहीं
1: हो,
0: वो चीज जो लड़का पढ़ लिख रहे हैं भाई,
1: वही तो
0: है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा, इन चीजों के कारण क्या है कि उनको स्कूल कॉलेज ये सब भेजने जरूरी भी है,
1: मगर एक है, उनको ज्ञान बढ़ रहा हो, बुद्धि नहीं बढ़ रही।
0: कैसे?
1: लड़कों को ज्ञान बढ़ रहा हो, बुद्धि नहीं बढ़ रही।
0: अच्छा
1: नहीं भगवान,
0: ये तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। जी जो बोल, मतलब तुम ज्ञान
1: हाँ,
0: बुद्धि
1: हाँ,
0: ऐसे ही मतलब ज्ञानी
1: हाँ,
0: बुद्धिमान
1: हाँ, हाँ,
0: जी का अलग अलग समझते हो?
1: सही में अलग अलग होते भाई।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं?
1: देखो
0: नहीं नहीं, देखो तुम्हारी बात सुन के हम चक्कर में हैं
1: हाँ,
0: और तुम्हारी हमारी बात सुन के और दुनिया चक्कर में आ जाए। जे नहीं
1: अच्छा, बूझो तो जाने
0: समस्या। अरे बूझो का समस्या दे रहे तो निदान दो।
1: हाँ बता रहे ना,
0: मतलब जे चार अलग हैं?
1: अलग है, बुद्धिमान
0: हाँ,
1: समझदार
0: अच्छा,
1: पढ़ा लिखा
0: हाँ,
1: और विद्वान जे अलग है।
0: कैसे?
1: अपन क्या समझते हैं पढ़ा लिखा आदमी समझदार है
0: हाँ,
1: होता है का? नहीं होता
0: हाँ।
1: सड़क पे आड़ो टेढ़ो चल जा रहो, कहूं से घुसे जा रहो, कहूं को समझ जाओ
0: हाँ।
1: तेज भाग रहा हो, कहा कछु कर रहा हूँ
0: हाँ।
1: माने पढ़ो लिखो है मगर समझदार नहीं है
0: हाँ।
1: और वही गांव खेड़े वाले देखो
0: हाँ।
1: जब भी आप शहर में निकलो
0: हाँ।
1: तो भी एक के लाइन में सड़क के बाजू में बाएं हाथ से चलते अपने ढंग से बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: इधर उधर चिचड़ बिचर नहीं
0: हाँ, मतलब वे समझदार है भले ही पढ़े लिखे।
1: पढ़े लिखे
0: अच्छा,
1: यही बुद्धिमान हो विद्वान हो।
0: कैसे
1: भाई? बुद्धिमान कौन को कहो जा?
0: जो बुद्धिमान है।
1: अरे मगर बुद्धिमान कैसे हो? जो कठिन बात होए
0: हाँ,
1: वो को बिल्कुल सरल करके लोगों को बता दें वो बुद्धिमान।
0: अच्छा,
1: माने बड़े बड़े संत देखो
0: हाँ, हाँ।
1: भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कठिन मार्ग सरल करके बता देते
0: हाँ। सो भी बुद्धिमान का है,
1: का है?
0: जी बात तो सही है।
1: और विद्वान कौन का है?
0: कौन
1: जो जरा सी बात को कठिन करके बता देते हैं लोगों,
0: वो विद्वान।
1: और खड़ा
0: अच्छा, यही से तुम कह रहे हैं कि बुद्धिमान
1: विद्वान
0: विद्वान
1: पढ़ा लिखा और समझदार
0: और समझदार
1: चारों अलग अलग होते।
0: अरे वाह भाई वाह, गजब की बात कर रहे हैं।
1: लड़कों को ज्ञान बढ़ गया, बुद्धि नहीं बढ़ी
0: हाँ।
1: एक बार मास्टर साहब बच्चों के साथ जा रहे थे
0: हाँ।
1: तो कहने लगे देखो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे सामान्य ज्ञान की।
0: अच्छा,
1: कहने लगे हो। मास्टर ने पूछा अच्छा बताओ सड़क पे तीन हाथी चले जा रहे, एक हाथी झाड़ पे चढ़ जाए तो क्या होगा
0: हाँ।
1: लड़का फट से बोला धरती पे एक हाथी कम हो जाएगा।
0: ले
1: मास्टर चक्कर में पड़ गया।
0: हाँ, सही बात
1: भाई, सही जवाब तो है नहीं जो
0: हाँ।
1: मगर गलत भी नहीं है
0: हाँ, जे बात ठीक है।
1: तीन में से एक कम होगा माने धरती हाँ। पे दो बचे ना,
0: बातों की गलत नहीं है।
1: मास्टर फिर सिर खोजाओ।
0: अच्छा,
1: और कहना अच्छा मान लो दूसरा हाथी भी पेड़ पे चढ़ जाए फिर
0: हाँ।
1: अब मास्टर को लगो कि जो के है कि धरती पे दो हाथी कम हो।
0: बिल्कुल, हम भी
1: तो लड़का फट से बोलो
0: हाँ।
1: झाड़ पे दो हाथी हो जाएंगे कहीं
0: बता
1: भला गलत नहीं है
0: हाँ,
1: हाँ। मगर सही भी नहीं है। अब जो उत्तर थोड़ी
0: हाँ, सही बात।
1: मास्टर जल लगाओ कहने काहे तीसरा हाथी भी चढ़ जाए फिर क्या होगा? लड़का कहने लगा झाड़ टूट जाएगा, समझता नहीं है क्या?

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है,
1: हंसना मना है। श्रोताओं, अभी आप इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख था हेमंत कुलकर्णी का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

अब से कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। रात्रि के 10 बजे हैं।

0: आकाशवाणी है प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति.
1: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी.
0: श्री मार्गी मधु कूडियाटम के अग्रणी कलाकारों में से एक है. कूडियाटम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है. 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है. उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी. कूडियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है. वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है.
1: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूडियाटम, द एंशिएंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. बोर्न ऑन 19 मई 1966, ही इज अ सन एंड डिसाइपल ऑफ पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार एंड नेफ्यू एंड डिसाइपल ऑफ द लेजेंडरी पद्मभूषण अम्मनूर माधव चाक्यार. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moolikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moolikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kut Ka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarbh Divya Pashupatastra Ki Prapti Ke Liye Pandavon Mein Arjun Bhagavan Shiv Ki Kathor Tabasya Aur Aradhana Karte Hai. अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं. उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है. अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं. इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा. इसी विवाद के परिणाम

0: Knockout cricket has been your nemesis. It's been your area of concern. Do you feel you're in a better place now to cope with this pressure?
1: Yeah, I think so. Everyone's feeling really confident in what they've done, and this group as well. So, yeah, we're in a good spot, and hopefully we can perform out there today.
0: Go well this evening.
1: Thank you.
0: So the news from the toss. South Africa have won it. They're having a bowl.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वाज कॉन्स्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वाज ही 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस when England were knocked out by South Africa in this very stage.
3: Yes, definitely they're known to upsetting any tournament, any team. And their form is yet to come. And I mean, especially if you talk about Wolwart, she's yet to give her best. I guess, I mean, they can do anything, and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this English team looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
4: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और ख़ासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. ख़ासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, ख़ासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलर्स पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नज़र आना है वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू. नाउ राजा, वी हैव सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. चार्ली डीन वाज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव ब्रंट वाज इंजर्ड. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
6: I think that the hallmark of a good team, Mega, and any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first bowl, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa, and everything that is past. You know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. And I think England will have the edge in this game.
4: Khyati, home condition aur gharilu support bhi hoga England ke paksh mein. To ye unke liye positive ho sakta hai ya unke upar pressure aa sakta hai iski wajah se?
3: Abhi tak to jaisa dekhne ko mil raha hai is tournament mein, unko support hi mil raha hai, and they are very well aware of the conditions. And jis tarike se wo khel rahe hain, unko pata hai ki kis tarike se hame gear, second gear lagana hai, kaise कब डिफेंसिव होना है. तो आई थिंक दे आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड एज वेल, एंड एज वेल एज दे आर वेल अवेयर अबाउट द कंडीशंस.
2: जीशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफ़ी अतिशी बल्लेबाजी की है अब तक. टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक.
5: जो उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर आज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज़ में, तो एक वो ज़रूर से नज़र आना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है, जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं। और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है, मोरल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ासकर जो जो वुमेंस क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की, वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.

पीसी बूथ ऑन एयर मिल रहा है। माइक वन टेस्टिंग, सेकंड माइक, माइक टू, कंप्यूटर लेफ्ट।

0: कंप्यूटर राइट
1: सिक्लोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।
0: स्टूडियो टाइम 5:17, कंसोल टाइम बताना 5:17, 22, 23, 24, 25, टेस्ट ओवर।